गणेश जी के दो स्वरूप विराजमान है। बड़े स्वरूप को स्थिर मन और छोटे स्वरूप को चिंताहरण गणेश कहा जाता है। मान्यता है कि इनकी आराधना से मन की चंचलता शांत होती है और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। गणेश जी के स्वरूप के सामने पहुंचकर जैसे मन स्वयं से कहता है, ठहरो, विश्वास रखो, राह अवश्य बनेगी। इसी विश्वास के साथ बप्पा को नमन करते हुए चलिए अगला गीत सुनते हैं।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: उज्जैन की धार्मिक यात्रा में एक ऐसा पड़ाव भी आता है जहां भक्त अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर आशाओं के साथ लौटते हैं। चिंतामण में विराजित श्री चिंतामण गणेश का धाम देश भर में प्रसिद्ध है। यहां भगवान गणेश की 3 संयुक्त प्रतिमाएं विराजित है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने चिंतामण गणेश, लक्ष्मण जी ने इच्छामण गणेश और माता सीता ने सिद्धि विनायक गणेश की स्थापना की थी। यही कारण है कि यहाँ कोई चिंता से मुक्ति की कामना लेकर आता है, कोई अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए और कोई कार्य सिद्धि का आशीर्वाद मांगता है। षड विनायक परंपरा में ये धाम आस्था, संकल्प और सिद्धि तीनों का सुंदर संगम है। तो आइए मन की सारी चिंताएं गणपति के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। श्रद्धा और भक्ति से सराबोर भगवान शिव का ये भजन सुनते हैं।

तो दोस्तों, इस शिव भजन के साथ ही आज का उज्जैन दर्शन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। शहर की कुछ नई धार्मिक गाथाओं के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब समय है महिलाओं के पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा का।

नमस्कार सखियों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त काजल। आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया प्राइवेसी और अपनी तस्वीरों को सुरक्षित रखने के आसान हैक्स। साथ ही त्योहारों के सीजन में घर को सुंदर बनाने के लिए हम जानेंगे इको फ्रेंडली डेकोर और वेस्ट सामान से बेस्ट क्राफ्ट्स बनाने के मजेदार आइडियाज। और सखियों, एक समाज के रूप में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों को एक सुरक्षित, भयमुक्त और स्वस्थ माहौल देना। इसी पर हम प्राप्त करेंगे बेहद खास जानकारी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुंदर गीत के साथ।

सखियों, त्योहारों का सीजन आते ही घर में सबसे पहला काम क्या शुरू होता है? साफ सफाई और घर की सजावट। बाजार जाते ही सुंदर सुंदर झालरें, रंग बिरंगी लाइटें और सजावटी सामान देखकर दिल करता है कि सब खरीद लें। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि त्योहार बीतते ही बाजार से लाया गया प्लास्टिक का ज्यादातर सामान कचरे में चला जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो क्यों ना इस बार हम अपने घर को सजाएं थोड़ी सी क्रिएटिविटी, ढेर सारे प्यार और वेस्ट से बेस्ट वाले फॉर्मूले से। आज हम बताएंगे इको फ्रेंडली डेकोर, बेकार सामान से घर को सुंदर बनाने के आसान क्राफ्ट आइडियाज। यकीन मानिए, इसके लिए आपको बाजार जाकर ढेरों पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके घर के कबाड़ में छिपा है सजावट का खजाना। इसमें पहला है सॉस, जूस या कोल्ड ड्रिंक की जो कांच की खाली बोतलें घर में पड़ी रहती हैं, उन्हें फेंकिए मत। उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें। अब उन पर एक्रिलिक पेंट से छोटे छोटे फूल या मांडना आर्ट बना लें। सूखने के बाद उनके अंदर फेरी लाइट्स डाल दें। शाम को जब ये जलेंगी तो आपकी बालकनी और लिविंग रूम में एक अलग ही जादुई चमक आ जाएगी। सखियो, हमारी अलमारी में अक्सर पुरानी साड़ियाँ, गोटे या दुपट्टे पड़े रहते हैं। अपनी पुरानी या टूटी हुई प्लास्टिक व कांच की चूड़ियों पर रंग बिरंगे धागे या पुरानी साड़ी की पट्टियाँ लपेटें। फिर उन्हें एक धागे से जोड़कर नीचे छोटे छोटे घुंघरू या लटकन लटका दें। ये खूबसूरत पारंपरिक वॉल हैंगिंग आपके मुख्य द्वार की शान बढ़ा देगा। शादी के पुराने कार्ड्स या ऑनलाइन शॉपिंग के गत्ते के बक्सों को चौकोर या दिए के आकार में काट लें। उन पर पुराने गोटे या चमकीले कागज चिपकाएं और धागे में पिरोकर दरवाजे का सुंदर तोरण तैयार कर लें। ये बाजार के प्लास्टिक वाले तोरण से कई ज्यादा खूबसूरत और अनोखा लगेगा। सखियो, पूजा के बाद जो नारियल के छिलके बच जाते हैं, उन्हें बाहर से सैंड पेपर से घिसकर चिकना कर लें। अब उन पर मनपसंद वाटरप्रूफ पेंट करें या वैसे ही नेचुरल लकड़ी वाले लुक में रहने दें। इसके अंदर वैक्स पिघलाकर बत्ती लगा दें या छोटी मोमबत्ती रख दें। जब ये तैरते हुए या टेबल पर जलेंगे तो घर को बहुत ही प्यारा एथनिक लुक देंगे। इसी तरह आप पिस्ता के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पुराने अखबार या रंग बिरंगी मैगजीन के पन्नों को गोल गोल पतली तीलियों की तरह लपेट लें। इन्हें चौकोर या गोल ढांचे में चिपका कर सुंदर फोटो फ्रेम, कोस्टर या दीवार पर सजाने के लिए वॉल आर्ट बना सकती हैं। इस पर थोड़ा सा गोल्डन स्प्रे या एक्रिलिक पेंट कर दें। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि यह अखबार से बना है। तो देखा आपने, थोड़ा सा समय और बच्चों के साथ मिलकर की गई यह मेहनत आपके घर को तो एक अनोखा लुक देगी ही, साथ ही हमारे पर्यावरण को भी प्लास्टिक के कचरे से बचाएगी। और सबसे बड़ी बात, जब मेहमान पूछेंगी कि ये कहां से लिया, तो आप गर्व से कह पाएंगी कि ये मैंने खुद बनाया है।

सखियों, घर में कोई छोटा सा फंक्शन हो, शादी पार्टी हो, या फिर हमने कोई नई साड़ी या सूट पहना हो, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? तुरंत फोन निकाला, एक बढ़िया सी सेल्फी ली और झट से व्हाट्सएप स्टेटस या सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। सहेलियों और रिश्तेदारों के लाइक्स, कमेंट्स की और तारीफें आती हैं तो दिल खुश हो जाता है ना? लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि जो तस्वीरें हम इतनी खुशी से दुनिया के सामने रख रहे हैं, क्या वे डिजिटल दुनिया में वाकई सुरक्षित हैं? कहीं हमारी कोई पर्सनल फोटो किसी अनजान या गलत हाथों में तो नहीं पहुंच रही? हम इसी बेहद ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, सोशल मीडिया और प्राइवेसी, अपनी तस्वीरों को सुरक्षित कैसे रखें। शुरुआत में ही मैं एक बात साफ कर दूं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना या फोटो डालना कोई बुरी बात नहीं है। बस जैसे हम रात को सोने से पहले घर के दरवाजे बंद रखते हैं, वैसे ही अपने फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डिजिटल लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला है प्रोफाइल लॉक या प्राइवेट अकाउंट। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स जरूर जांचें। प्रोफाइल को प्राइवेट या उपलब्ध प्राइवेसी विकल्पों के अनुसार सीमित करने से आपकी तस्वीरों और जानकारी की पहुंच कम ही जा सकती है। WhatsApp की माय कॉन्टेक्ट्स प्राइवेसी। WhatsApp में प्राइवेसी सेटिंग्स के जरिए आप यह तय कर सकती हैं कि आपकी प्रोफाइल फोटो और स्टेटस किन लोगों को दिखाई देते हैं। जरूरत के अनुसार माय कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट या अन्य उपलब्ध विकल्प चुन सकती हैं। और सबसे खास, बच्चों की तस्वीरें पोस्ट करते समय सावधानी रखें। बच्चों की तस्वीरें पोस्ट करते समय यह भी देखें कि तस्वीर में स्कूल का नाम, पहचान पत्र, घर का पता या ऐसी कोई जानकारी न दिखाई दे जिससे बच्चे की पहचान या स्थान का आसानी से पता चल सके। अपने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया अकाउंट्स में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर सक्रिय करें। इससे आपके अकाउंट की सुरक्षा मजबूत होती है और अनधिकृत लॉगिन के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। याद रखिए, प्राइवेसी केवल सेटिंग्स नहीं, हमारी अपनी सावधानी से भी मजबूत होती है। तो चलिए बढ़ते हैं इस सुंदर गीत की ओर।

0: सखियों, बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए हमारे देश में एक बेहद सख्त और विशेष कानून बनाया गया है, जिसे हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर अब हमें जानकारी देंगी बाल अधिकारों पर कार्य कर रही समाज सेविका प्रियंका जोशी जी।
1: हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय बालक, माता पिता, शिक्षक तथा समाज के हर जिम्मेदार नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज का विषय है बाल सुरक्षा कानून, बालक एवं उनके अधिकार। आज एक महत्वपूर्ण बाल कानून को हम विस्तार से समझेंगे, जो है पॉक्सो एक्ट 2012। यह एक्ट 14 नवंबर 2012 को पारित किया गया था। इस एक्ट का पूर्ण मतलब है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। यह कानून बच्चों के लिए बना है, लेकिन हम इसे आसानी से समझ सकते हैं यह कानून किन बच्चों के लिए बना है और किस उम्र के बच्चों पर यह लागू होगा। यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, यानी कि जो भी बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उन सभी पे लागू होगा। यह कानून लड़के एवं लड़कियां दोनों पर समान रूप से लागू होगा, यानी यह कानून लड़कों पे भी उसी रूप से लागू होगा और लड़कियों पे भी उसी रूप से लागू होगा। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आइए अब हम जानें कि बालकों के विरुद्ध अपराध या बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध होता क्या है। जाने अनजाने यदि कोई व्यक्ति बच्चे को अनुचित स्पर्श करे तो यह एक अपराध है। बच्चों से अश्लील बातें करना या गलत टिप्पणी करना, यह एक अपराध है। बच्चों को अश्लील चित्र दिखाना, बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाना या अश्लील चित्र या वीडियो लेना, यह भी एक अपराध है। बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग करना, उनके निजी चित्रों को दिखाकर उन्हें परेशान करना, यह भी एक प्रकार का लैंगिक अपराध है। यौन उत्पीड़न या बलात्कार जैसा कुकृत्य, ये सभी लैंगिक अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इन्हीं सभी अपराधों को बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध माना गया है। आइए हम इसे और अधिक सरल भाषा में जानने का प्रयास करते हैं कि पॉक्सो एक्ट है क्या या बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध किस प्रकार होते हैं। इसके लिए हम दो कार्ड चुनेंगे, एक कार्ड रेड कार्ड और दूसरा ग्रीन कार्ड। रेड कार्ड व्यवहार में जो भी अनुचित स्पर्श होता है उसे रखा जाता है, या असुरक्षित व्यवहार, अर्थात यदि कोई व्यक्ति आपके निजी अंगों पर, आपके मुंह पर, आपके छाती पे या आपके नितंब पे टच करे बच्चों के, और ऐसा टच करने पर अगर कोई बालक गंदा महसूस करता है या असुरक्षित महसूस करता है, तो इस प्रकार के व्यवहार को असुरक्षित व्यवहार या रेड कार्ड व्यवहार कहा जाता है। इसके विपरीत ग्रीन कार्ड व्यवहार जो होता है वो एक सुरक्षित स्पर्श या सुरक्षित व्यवहार होता है, जो कि माता पिता, शिक्षक, दादा दादी या किसी भी अभिभावक द्वारा बच्चों को छूने से होता है। इसमें वे सुरक्षित महसूस करते हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि असुरक्षित व्यवहार बैड टच होता है और सुरक्षित व्यवहार गुड टच होता है। तो जो भी बैड टच होता है या असुरक्षित व्यवहार होता है, वही बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध की श्रेणी में आता है। यह सरल भाषा में बच्चों को और अभिभावकों को समझाने का प्रयास किया है। अगर इस प्रकार का कृत्य किसी भी बच्चे के साथ हो जाए तो इस स्थिति में बच्चे या माता पिता या अभिभावकों को क्या करना चाहिए, वह भी विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगी। सर्वप्रथम, अगर बच्चे के साथ कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध या इस प्रकार का असुरक्षित व्यवहार करता है, तो बच्चे को एक सुरक्षा मंत्र हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले नो, अर्थात नहीं। अगर कोई आपसे इस प्रकार का व्यवहार करता है तो आप उसका विरोध करें, उसे ना कहें कि इस प्रकार का व्यवहार ना करें। रन, तुरंत उस जगह से ऐसी जगह चले जाएं जहां बहुत से लोग हों या बहुत सी भीड़ हो। और तीसरा टॉक, यानी बात करना, रन एंड टॉक। वहां से उसे ना कहें, वहां से चले जाएं, भाग जाएं। और तीसरा टॉक, यानी बताएं किसी भी विश्वासपात्र व्यक्ति को, आपके माता पिता, आपका दोस्त, आपके शिक्षक, आपके दादा दादी या जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, उनसे अपने इस बात के बारे में साझा करें कि आपके साथ इस प्रकार का कोई कृत्य हुआ है। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति आपकी जान पहचान वाला हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आपको लालच दे, आपको डराए, तब भी आप डरे नहीं और इसका विरोध तुरंत करें। तुरंत ही अपने पालक या माता पिता से इसकी शिकायत करें। इस प्रकार के अपराध के विरुद्ध में पालकों का या बालकों का क्या कर्तव्य बनता है, वे कहाँ इसकी शिकायत कर सकते हैं? आप अपने किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर के इसकी FIR लिखवा सकते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन में FIR लिखने वाला व्यक्ति ये ध्यान रखे कि वह FIR सरल भाषा में लिखे, जिससे FIR बालक को आसानी से समझ में आ सके। आप चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1098 पर कॉल करने पर 60 मिनट के भीतर टीम आपके पास सहायता के लिए उपलब्ध हो जाएगी। आप 112 आपातकालीन नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। इसके अतिरिक्त आप विशेष किशोर पुलिस यूनिट जो होती है, जुवेलाइन जस्टिस, यहाँ पर भी आप इस प्रकार की कंप्लेन कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति में भी इस प्रकार की कंप्लेन दर्ज होती है, यानी कि CWC, यहाँ पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अगर हमने कंप्लेन लिख दी तो हमारे बच्चे की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कंप्लेन लिखने के बाद, केस दर्ज करवाने के बाद बच्चे व परिवार की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। बच्चे के बयान सुरक्षित वातावरण में लिए जाते हैं, जो कि बच्चे की मनोस्थिति या मानसिक स्थिति को देखकर लिए जाते हैं। वहां भी एक परामर्शदाता उपलब्ध रहता है, उसके सामने ही बयान होते हैं। ऐसे में यदि आप चाहें तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वहां भी निशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। वहां पैरालीगल वॉलेंटियर आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। साथ में हम आपको वहां पर निशुल्क वकील आपके लिए नियुक्त करते हैं और आपको आपके मनोस्थिति के अनुसार परामर्शदाता भी उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे केस की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट बनाई जाती है। कई बार बालक खुली कोर्ट में अपने बयान देने में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो ऐसे केसेस की सुनवाई बंद कमरे में होती है और गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है। ऐसे अपराधों के विरुद्ध जो निर्णय होते हैं वे त्वरित होते हैं, यानी कि ये जो पूरे केस होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाते हैं। इस प्रकार के अपराध की श्रेणी के अनुसार, यानी अगर किसी अपराधी ने इस प्रकार का अपराध किया है तो अलग अलग श्रेणी के अनुसार उसे 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष या कई कई केसों में उम्र कैद की सजा भी होती है। तो यदि इस प्रकार का कोई भी कृत्य किसी बालक के साथ हुआ हो तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके विरुद्ध तुरंत कंप्लेन करें और उसके पूर्व में जागरूकता फैलाएं। बच्चों को घर में और विद्यालय में गुड टच, बैड टच, रेड कार्ड, ग्रीन कार्ड, यह सब सरल भाषा में समझा देना चाहिए, जिससे बच्चों को यदि कभी इस प्रकार का अपराधों का सामना करना पड़े तो वह घबराए नहीं। साथ में जो सुरक्षा मंत्र है, नो रन एंड टॉक, वो भी बच्चों को याद करवाएं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हम समाज को जागरूक कर सकेंगे। कानून आपके साथ है क्योंकि न्याय सभी के लिए है, यही हमारी टैगलाइन भी है, न्याय सबके लिए। अंत में मैं यही कहूंगी कि चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है और जागरूकता सुरक्षा। तो आए हम सब मिलकर संकल्प लें, ना बच्चों को डराएंगे, ना बच्चों को चुप कराएंगे, ना उनकी बातों को नजरअंदाज करेंगे। उनके साथ गलत हुआ है तो हम उनका सहयोग करेंगे, उनको सुरक्षा देंगे। धन्यवाद।
0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे पॉक्सो एक्ट पर प्रियंका जोशी जी की वार्ता, और इसी के साथ वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। अब हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित होगा।

0: तलत अजीज की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

दीवाना एल्बम से ये गीत सोनू निगम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का संगीत। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। नजमा मर्चेंट ने इसे लिखा।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: वेलवेट वॉइस एल्बम से अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में ये गजल।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, नशे मन एल्बम का नाम। कासिम कुरैशी ने इसे लिखा, संगीत भूपिंदर सिंह का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।

0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल, वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

पंकज उदास की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे मुस्कान एल्बम से, उन्हीं का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवु ओजुफू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अपनी आर्थिक शक्ति को अपने लोगों के लिए रोजगार, धन और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग की व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,352 पर रहा। एशिया कप महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। कल भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है प्रोग्राम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत दूसरा आदमी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जो कहीं ना कहीं संबंधित है आंखों से, नजरों से, नैनों से।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे सीआईडी फिल्म से, जहां निसार अख्तर ने इसे लिखा।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि

0: कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

0: येसुदास की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे सुनैना फिल्म से। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और उन्हीं का संगीत।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: चांदनी चौक टू चाइना, ये था फिल्म का नाम। शंकर महादेवन श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रजत अरोड़ा ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: शंकर महादेवन की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, लक बाय चांस फिल्म का नाम, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

अमित त्रिवेदी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे अंधाधुन फिल्म का नाम। जयदीप साहनी ने इसे लिखा, अमित त्रिवेदी का संगीत। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और मैं आज सफर में आपके साथ हूं अनुराधा उपाध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिनमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो ये पोस्ट इबारत हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं, प्यार भरे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आपने चुने हैं, कौन से गीतों की लिस्ट बनाई है और वो गीत हमारे लिस्ट से मैच करते हैं कि नहीं मैच करते हैं। और साथ ही अगर नहीं भी मेल खाते तो भी आप वहां पर अपने पसंदीदा गीत इन शब्दों से चुने हुए लिख सकते हैं, हो सकता है हम इस प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की बिना देरी के, लेकिन एक बार इबारत फिर से पढ़ देते हैं ताकि जिन लोगों ने लेट ट्यून इन किया है, हमारे साथ लेट जुड़े हैं, वो भी अपने संदेश हम तक पहुंचा सके। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारे लिए इन पलकों पर मैंने ख्वाब शाम से सजाए हैं, मेरे मन को छूकर तुमने अरमान जगाए हैं, खिले गुंचे हवाओं में खुशबू सी है, गा रही ये जमीं मौसम के इशारे हैं, सोचती हूँ कह दूँ या चुप रहूँ, दिल की बात जुबां तक लाऊँ या नहीं, तुम सामने हो तो लगता है इससे खूबसूरत कोई पल है ही नहीं, तुम मुस्कुराता हुआ चांद मेरा, मेरी एक मुस्कान के आगे, तेरी एक मुस्कान के आगे फीका लगे ये संसार सारा। जी हाँ, ये थी इबारत और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की इस गीत के साथ। साथ ही साथ आपके संदेश हम तक पहुँच गए हैं, वो हम लेते हैं इस गीत के बाद।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लहू के दुरंग फिल्म का नाम, फारूक कैसर ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीत, और मुस्कुराते हुए हमने आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया। आपके संदेश भी मुझ तक पहुंच चुके हैं और खासकर इस मुस्कुराते हुए गीत के लिए बहुत से मैसेजेस आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफर में महबूब और महबूबा की बातें होंगी, जहां एक दूसरे का बखान करते नहीं थकते हैं। उनके चेहरे पर वो दिलकशी है कि एक मिनट भी वे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और एक दूसरे को निहारते हुए गुफ्तगू करते हैं। इसी बारे में कुछ कहा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत इबारत है और इसमें प्रेमी मन की उस उधेड़ बुन और समर्पण को दर्शाया गया है, जहां एक तरफ आंखों में सजे ख्वाब और दिल में जगते अरमान है, तो दूसरी तरफ ये संकोच भी है कि दिल की बात जुबां पर लाऊं या नहीं। हमारी श्रोता कहती है कि ये जो प्यार का एहसास है, उसे महसूस करते हुए उस सुंदर पल की याद में वो खो गई हैं और प्यारी सी मुस्कान के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता कहते हैं कि इससे खूबसूरत पल और कोई हो ही नहीं सकता कि मुस्कुराते हुए चांद को सामने देखना। अब वो चांद आसमान में है या फिर आपके सामने बैठा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में कुछ ऐसा ही मीठी सी मोहब्बत और खूबसूरत एहसासों से भरा हुआ है, कुछ ऐसा लगता है जहां पर ख्वाब भी हैं जो ख्वाब जगा देते हैं। जी हाँ, एक श्रोता ने कुछ बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखकर भेजी है कि पलकों पर कुछ शामें ठहरी थी, उनमें तुम्हारे आने की खुशबू थी, तुम आए तो हवा ने धीरे से करवट ली और मौसम ने जैसे कोई राज कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से संदेश के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये कविता रूपी इबारत जो है प्रेम के आरंभिक एहसास, मौन आकर्षण और प्रियतम के प्रति संपूर्ण समर्पण की कोमल अभिव्यक्ति है। और उन्होंने बहुत से गीत भी लिखे हैं जो उन्हें लगता है कि ये जरूर आज प्ले होंगे। देखते हैं। तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि आज की ये जो इबारत है, इसमें कहीं ना कहीं मुस्कान, मुस्कुराहट और किसी की खुशबू है। जी हाँ, और हम किसी और की मुस्कुराहट के पीछे तो मरते ही हैं, लेकिन साथ ही ये भी है कि आपका अपना चेहरा जो मुस्कुराता है, खिलता है, वो हर किसी को अच्छा लगता है। तो क्यों ना इसके बारे में बात की जाए कि ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है, वो जो मन को लुभाता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? अपने मुस्कान के लिए, अपने चेहरे के लिए क्या करते हैं इस खुशी को बरकरार रखने के लिए? मुझसे साझा कीजिए अपने संदेश और बहुत अच्छा लगेगा उन संदेशों को पढ़कर। फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हरजाई फिल्म से, निदा फासली ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का संगीत। प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं, उनमें से एक संदेश जो है हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने कहा सुबह उनसे कि आपके लिए इन पलकों पर मैंने ख्वाब सजाए हैं, कल शाम से सजाए हैं, और उन्होंने पूछा क्यों, तो जवाब आया कि गणपति बप्पा आने वाले हैं, पधारने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करनी है, और ये अपनी अदरक इलायची वाली चाय का आनंद लेते हुए, साथ ही थोड़ा बहुत साफ सफाई का कार्यक्रम जारी रखते हुए इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार और विश्वास जीवन में बना रहना चाहिए ताकि मिठास बनी रहे, जिसके आने के एहसास से ही मन में उमंगे उठने लगे, मन प्रफुल्लित हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, हवाओं में घुली खुशबू, खिलती कलियां और मुस्कुराता मौसम सब तुम्हारे आने का ही इशारा है। तुम मेरा वो चमकता चांद हो जिसकी एक मुस्कान के आगे ये पूरा संसार फीका लगता है। अरे वाह, आपने तो एक इबारत, नई इबारत ही लिख दी इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, बहुत खूब। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सकारात्मक सोच रखते हैं जिससे मन खुश होता है और फिर अपने आप ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट छाई रहती है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो चेहरे पे भी दिखती है और हमारे लिए तन मन दोनों तरीके से बहुत अच्छी होती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराता हुआ और प्यार से भरा चेहरा केवल शारीरिक सुंदरता का प्रतीक नहीं होता, बल्कि ये इंसान के भीतरी सौंदर्य, करुणा और ऊर्जा का आईना होता है। साहित्य में चेहरे की मुस्कान और आंखों में छिपे प्यार को ईश्वर का सबसे खूबसूरत वरदान माना गया है, जो बिना कुछ बोले भी सामने वाले का दिल जीत लेता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराता हुआ और प्यार से भरा चेहरा एक ऐसा शस्त्र है जो नफरत की आंधियों को शांत कर सकता है। ये इंसानियत की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है और आज के तनावपूर्ण युग में जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में व्यस्त है, ऐसे में चेहरा ईश्वर के साक्षात आशीर्वाद की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य प्रेम और आनंद ही है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश ये, और साथ ही साथ सकारात्मक सोच तो है ही जो हम अपने आप को खुश करने के लिए रखते हैं, स्वस्थ रखने के लिए रखते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपको पसंद आती है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। या समझो कि हम कई बार कुछ अच्छा गाना सुन रहे होते हैं, वो गाना सुनते सुनते कहीं ना कहीं होठों पर खिली मुस्कान एकदम आँखों की चमक बन जाती है, तो ऐसी कोई बातें, या हाल फिलहाल आप कहीं घूम के आए हों जिसने आपको रिफ्रेश कर दिया हो, इस तरह के अनुभव भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं।

तराना फिल्म से ये गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। रविंद्र रावल ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत। सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि ये कौन से अभिनेता पे फिल्माया गया, जी हाँ बिल्कुल, मिथुन चक्रवर्ती पर ये फिल्माया गया है और बहुत से सही जवाब हमें मिले हैं। साथ ही आपके संदेश मिले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छह गीतों की इबारत में से चौथे नंबर पर लिखा ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें अच्छा लग रहा है। जी हाँ, धन्यवाद। गुंजे लगे हैं कहने, गीत बहुत ही प्यारा है, हमने सोचा था लिखेंगे पर भूल गए। कोई बात नहीं, ये गीत शामिल हो चुका है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में किसी भी वजह से चेहरे पर मुस्कान आए, दिल को सुकून मिले और रिश्तों में प्यार बना रहे। नफरतें तो बहुत है दुनिया में, हम क्यों ना थोड़ा सा प्यार बांटें। जी हाँ बिल्कुल।

0: साथी श्रोता लिखते हैं कि दिल की बात कहें या ना कहें, ये एक हमेशा एक असमंजस छाया रहता है, क्योंकि कहने से कई बार रिश्ते खराब भी हो जाते हैं और कहने से कई बार वो रिश्ते पार भी हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन शब्दों का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे में। और आप किन से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब सोचते हुए उसके बाद अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि शब्द एक बार कहे जाएं तो फिर वापस नहीं लिए जाते हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिख के भेजी है कि तुम्हारे साथ बारिश में भीग जाने का ख्वाब कब से मन में है, तुम समझ सको तो मेरे मौन को समझ लो, तुम्हारी हथेली पर ठहरी बूंदों में से कोई अनकही कहानी पढूं और तुम मेरे मौन को बिना कहे समझ लो। जी हाँ, ये चंद पंक्तियां मैंने पढ़ी है क्योंकि ये एक तरह की इबारत ही लिख डाली है इन्होंने, और मैं चाहूंगी आप अपने अनुभव साझा करें क्योंकि वो अनुभव पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा अच्छा लगेगा सबको जानकर। आप सुन रहे हैं मेरे साथ सुरीला सफर।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

अमित कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे तेरी कसम फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चेहरे पर मुस्कान आती है गीत संगीत से और एक शांति और सुकून मिलता है उन्हें अपने पसंद के गीत सुनकर, और पसंदीदा गीत बज जाएं अपने आप तो फिर क्या कहने। इस प्रोग्राम में कुछ गीत जैसे कि तराना का गीत एक अरसे के बाद वो सुन रही हैं और इसीलिए उन्हें अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि पसंदीदा गानों को वो लगातार दिन भर सुन सकते हैं। जी हाँ, म्यूजिक एक थेरेपी है और जो हम अपने मन को प्रफुल्लित करने के लिए सुन सकते हैं हमेशा। और एक बहुत अच्छी बात है कि म्यूजिक सुनते सुनते, संगीत सुनते सुनते हम बाकी के काम भी कर सकते हैं, हमारे बाकी काम नहीं रुकते हैं बिल्कुल भी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब पंछी आकर पानी पीते हैं एक एक करके और उन्हें वो निहारते हैं, देखते हैं, तो उनके चेहरे पर एक प्यारी से मुस्कान आ जाती है ये देखते हुए, और ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर हमें देख रहे हैं और ये पंछी भी कुछ बोल तो नहीं पा रहे लेकिन जरूर राहत महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि धुंध और कोहरे से भरी हुई ये पर्वत घाटियों में गूंजता ये सुंदर गीत उन्हें बहुत पसंद आया है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी मुस्कान हमारे लिए एक फायदे का सौदा होती है, इसके जरिए दुनिया जीती जा सकती है। और उन्होंने काफी साल एक डाक विभाग में गुजारे हैं, सरकारी विभाग में, और वहां पर उनकी मुस्कान उनका शस्त्र हुआ करती थी। गुस्से भरे शख्स को भी वो इस हथियार के सहारे शांत किया करते थे। और एक बार किसी ने उनके सामने पैसों का बंडल डाला डिपॉजिट करने के लिए, तो उन्होंने डायलॉग मार दिया एक फिल्म का कि आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं, और वो चौंक गए और बस खिलखिला उठा सारा समाज जो था। जी हाँ बिल्कुल, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ गीत हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, जैसे कि ये अगला गीत। बढ़ते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

ये सुधास की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, कैफी आजमी ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत और टूटे खिलौने फिल्म का नाम। आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में कुछ देर पहले जो आपने गीत सुना तराना फिल्म से, गुंचे लगे हैं कहने, शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत और इसे लिखा तिलक राज थापर ने और संगीत राम लक्ष्मण का। आपके संदेशों पर आते हैं और जब मुस्कुराते हुए चेहरे की बात आती है तो आपके संदेश भी मुस्कुरा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है पढ़ते हुए। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज सुरीला सफर के गीत मुझे उम्र के उस पड़ाव पर अतीत की खूबसूरत यादों में ले गए और होठों पर बरबस ही मुस्कान आ गई। धन्यवाद विविध भारती, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं कि पिछले महीने अगस्त में वो जम्मू कश्मीर बाबा अमरनाथ जी माता वैष्णो देवी गोल्डन टेंपल अमृतसर के दर्शन करने गए थे और साथ में श्रीनगर भी घूमने गए थे और ये कहीं ना कहीं उन्हें रिफ्रेश कर गया, आनंदित कर गया। जी हाँ, घूमना बीच बीच में वक्त निकालना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सारे गाने हमारे जवानी के दिनों यानी कि कॉलेज के ज़माने के सुनाए जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो जवानी लौट आई है। जी हाँ, इन गीतों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराने की वजह तुम हो विविध भारती, इस परिवार यानी कि विविध भारती परिवार से जो सुकून मिलता है मानो दिल में किसी ने मरहम लगा दिया हो और गीत बजा दिया हो। जी हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि मरहम लगाने की जरूरत ना पड़े लेकिन हाँ आपके दिल को आनंदित जरूर करते रहें। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेहरे अगर हंसमुख होते हैं तो उन्हें देखते ही बस उनसे बात करने का जी चाहता है, किसी न किसी बहाने बस उनसे बात हो जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसे हमारे साथ दिल्ली में हुआ एक ऑफिस में, और एक सेक्रेटरी थी, उन्हें देख के उनका चेहरा देखकर अभी तक नहीं भूले हैं वो, और बस बहुत ही हंसमुख थी और उनका वो चेहरा दिल में उतर आया था। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आप अपने नूरानी चेहरे को हंसते हुए रखने के लिए, मन को झूमता हुआ रखने के लिए क्या करते हैं? इसके अलावा कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अभी रिसेंटली जिससे कहीं ना कहीं दिल प्रफुल्लित हो जाता है, वो जरूर लिखकर भेजिए। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज में राजेश रोशन का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही आसान थी, बहुत जल्दी उन्होंने गीतों की लिस्ट बना ली, फहरिस्त बना ली, लेकिन अभी अभी वो बस किसी काम से खाली हुए हैं, खाना खाने का काम कर रहे थे और अभी किसी और काम की तरफ बढ़ना है। जो उन्होंने लिखा है वो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि खाना खाने के बाद गीत सुनते हुए अब किसी और काम की तरफ बढ़ेंगे। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये एक घंटा यानी कि 60 मिनट वीबीएस टीम के साथ हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं कि संबंध बनाना यानी कि रिश्तेदारी निभाना बहुत ही रिश्तेदार रखना होता ज़रूर है, क्योंकि हमारे साथ रिश्तेदार जुड़े होते हैं, परिवार वाले लोग जुड़े होते हैं, लेकिन इस रिश्ते का निर्वाह करना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कभी किसी को कुछ बुरा लग जाए या किसी को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं असमंजस जरूर हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं जब ऐसी चीज़ें होती है, तो ऐसे में बहुत समझदारी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जीवन का नाम बैलेंस बनाकर चलना है, ये बैलेंस जो है वो ज़रूर रहना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे जिन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखकर भेजी है, तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफ़र, छोड़ो भी ये दुनिया का डर, तोड़ो ना दिल इनकार से, देखो कभी तो प्यार होता है, कुछ कुछ उन्होंने लिखा है, हालांकि अच्छा लिखा है, दिल से लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। छूकर मेरे मन को, इस गीत की प्रतीक्षा कब से थी और अब जाकर ये गीत आया है, ऐसा दो से तीन श्रोताओं ने लिखा है जिन्हें इस गीत का इंतजार था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है,
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल,
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हम किसी से कम नहीं फिल्म से आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ चेहरा किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस शख्स की मुस्कान सबसे अच्छी लगती है जो बिना किसी स्वार्थ छल या दिखावे के अपने दिल से मुस्कुराता है। जी हाँ, और ये मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान होती है। छोटे बच्चे की मुस्कान भी हमारा मन मोह लेती है और वो भी बड़ी मासूम और किसी स्वार्थ के परे होती है। बिल्कुल सच कहा आपने। बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि उनके बहुत सी गीतों की फहरिस्त पूरी हुई है और प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति से बंधी ये जो इबारत है इसमें बहुत से गीत आसान थे गेस करने बताने, लेकिन सुनने में उतना ही मजा आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार इंसान के भीतर दया धैर्य और संवेदनाशील को जगाता है जिससे वो जिंदगी को और सकारात्मक नजरिए से देखने लगते हैं। जी हाँ, सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्यार जिंदगी का वो हसीन एहसास है जो किसी के करीब होने से ज्यादा उसके ख्याल मात्र से चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके संदेश पढ़कर इस वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कान खिल गई है।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

0: फिलहाल सोच से परे ये गीत हम आपको
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म अय्या से।

अमित त्रिवेदी का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म अय्या से। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का। अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है उर्मिला ढंगर की आवाज़ में फिल्म फरारी की सवारी से।

0: देना।
1: प्रीतम का संगीत गुरु ठाकुर के लिखे बोल, उर्मिला धांगड़ की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म फरारी की सवारी से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विकास और आर्थिक ताकत के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टार्टअप, निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। आज भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए विश्व के बड़े देशों से आत्मविश्वास के साथ संवाद कर रहा है।
1: वैश्विक स्तर पर इतने उथल पुथल भरे माहौल में भी आर्थिक विकास दर है, वो दर हमको हमारे नेतृत्व पे माननीय मोदी जी पे गर्व करने का मौका देती है। इस दर की स्पीड देखे दुनिया में, अमेरिका की 2%, चाइना की 4% और भारत की 7.8% है। ये अपने आप में सब कुछ कह देती है कि आज वैश्विक युद्धों के माहौल के बीच में भी एक देश कैसे रास्ता निकाल करके प्रगति करता है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और तुलसीराम सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने समिट के शुभारंभ अवसर पर इंडस्ट्री एक्सपो का उद्घाटन कर उसका अवलोकन भी किया। सागर जिले के बंडा और शाहगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि लखेरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ 25 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बड़ाइठा थाना क्षेत्र में हनुमान टोंग मंदिर के पास जंगल में घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किए जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अब तक प्रशासन ने 16 मौतों की पुष्टि की है। 46 मरीज बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं जिनमें 5 की हालत गंभीर है। प्रदेश में आज करीब 7,000 बैंक शाखाओं पर कामकाज प्रभावित है। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर करीब 40,000 बैंक कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हो रही हड़ताल से नकद जमा निकासी, चेक क्लियरेंस और कर्ज से जुड़े काम प्रभावित रहेंगे। वहीं डिजिटल बैंकिंग, UPI और ATM सेवाएं सामान्य रहने की संभावना है। हड़ताल के बाद शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण बैंकिंग सेवाएं सोमवार से सामान्य होने की संभावना है। अब बात मौसम की। प्रदेश में 3 दिन की सुस्ती के बाद मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मेहर, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल से इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग में भी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। राज्य में अब तक 31.3 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 2.6 इंच कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के कृषकों की फसल बीमा संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु कल कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कटनी नगर निगम द्वारा स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कुल 4,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। शिवपुरी जिले में अवैध शराब के निर्माण और विक्रय के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। और जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज मलेशिया से होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमरीकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आरेना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान

और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएरा करेंगे।

0: पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवु ओजुकवु और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ. जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही।
4: For BRICS particularly, higher economic activity,
5: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
4: एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट।
1: डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
4: This year is a milestone.
5: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
4: Has sought to carry this evolution forward through the theme.
1: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
6: ब्रिक्स टुडे represents almost 1/4.
7: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार

0: के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
3: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1,046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1,942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के पालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज चार महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। तीन देवियां फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा एस डी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

संगम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले। इस फिल्म से आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, जीवन में खुश रहना, प्रसन्न रहना, सेहत का ध्यान रखना कितना आवश्यक हो चला है। ये सब हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, फिर भी घर के व्यस्त कामकाज में स्वयं का ध्यान रखना कहीं पीछे छूट जाता है एक महिला के लिए। लेकिन ये भी याद रहे कि हम सहेलियां ही तो परिवार की धुरी है ना। खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, समय निकालिए, थोड़ा वर्जिश कीजिए और हाँ, मंगलवार के दिन हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए फोन कॉल्स कीजिए। तो बस अपनी सखियों से बात करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से होंगी बातें। देखिए ना, फोन की घंटी भी बज उठी है। चलिए उठाते हैं आज का पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्कार, बताइए किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम है आरती।
0: कहाँ से बात कर रही है आरती जी?
1: मैं हैदराबाद किशनबाग गुड़ा से बात कर रही हूँ।
0: हैदराबाद से? अरे वाह, क्या हाँ। बात है, बताइए कैसी हैं आप और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: कुछ नहीं, सावन का महीना, वही पूजा व्रत वही चल रहे हैं।
0: हाँ हाँ।
1: और मुझे वेद भारती मतलब बहुत बचपन से मेरे नाना जी सुना करते थे पहले, उसके बाद फिर मेरे पापा मम्मी सब सुनते हैं और मेरे बहने मेरे मम्मी पापा सब सुनते हैं, समझे मेरे घर पे।
0: अच्छा,
1: हमारे नाना जी को अलग अलग रेडियो लाने के शौक थे, मेरे मम्मी बताती है अलग अलग रेडियो से वो लाते रहते थे हमेशा।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। अब ये बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जय संतोषी माँ है फिल्म का नाम है और करती हूँ तुम्हारा व्रत में गाने का बोल है।
0: जी बहुत सुंदर,
1: आपने मेरा कॉल लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके वेद भारती से।
0: आरती जी,
1: आपने सौभाग्य है
0: जी
1: मिला जो आपका इसमें बात करने का।
0: आरती जी, आपने समय निकाल करके कॉल किया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए, खुश हम भी बहुत हैं और इसी बात पर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली आज हमसे बात कर रही है?
1: पुष्पा देवी झांसी से बोल रहे हैं।
0: झांसी से? अरे वाह पुष्पा जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी
0: जी। और क्या चल रहा है इन दिनों, और परिवार में कौन कौन है?
1: दो लड़के हैं, लड़की हैं, सास ससुर हैं, पति देव हैं।
0: अरे वाह, आप क्या करती हैं? भरा पूरा परिवार है ना?
1: हाँ, भरा पूरा परिवार है। हम फल की दुकान चलाते हैं दीदी।
0: आपकी ये फल की दुकान है तो अलग अलग किस्से कहानियाँ भी तो मरीज के जो परिवार जन होते होंगे वहाँ पे खड़े होके बातें करते होंगे।
1: हर कोई सुनाता है जब आते हैं हमारे फल की दुकान पे लेने के लिए, तो सब कोई कोई अच्छी सुनाता है, कोई अपनी दुखी ज्यादा रहती है यहाँ पर, दुख मतलब
0: जी जी
1: ज्यादा वितरण करते
0: हैं। तो फिर आप क्या उन्हें कुछ प्रेरणा के दो शब्द कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इस तरह का कुछ कहती हैं?
1: हाँ, भगवान जी कहते हैं कि दुआ करेंगे सब ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: टेंशन नहीं लो मतलब
0: जी। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं जो मेरी रूह से चैन दे, प्यार दे जिंदगी गए हो।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म कसूर का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, नमस्ते। किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ, इंदौर से।
0: जी ज्योति जी, इंदौर से बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ
0: जी। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? अभी तो त्योहारों के बिल्कुल मौसम जैसा आ गया है ना?
1: जी बच्चे हैं छोटे।
0: हाँ,
1: 6 साल का है, 3 का है।
0: तो मतलब दिन भर व्यस्तता तो आपकी रहती ही होगी, है ना?
1: जी
0: हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों को उनका ध्यान
1: स्कूल
0: रखना।
1: जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, जी। स्कूल जा रहे हैं तो उनका टिफिन बनाना है, फिर घर वापस आ रहे हैं तो तब भी बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता, कुछ अलग अलग तरह की चीजें चाहिए होती हैं, है ना?
1: जी
0: जी
1: हाँ।
0: तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं या घर पर ही पढ़ते हैं बाद में, स्कूल से आने के बाद?
1: ट्यूशन जाता है एक बड़ा, एक नहीं जाता छोटा।
0: जी तो यानी कि आपको तो समय ही नहीं मिलता होगा अपने लिए।
1: हाँ बहुत कम मिलता है।
0: ऐसे में फिर रेडियो किस तरह सुन पाती हैं आप?
1: जी सुन लेते थोड़ा बहुत, ये सुनते हैं हमारे हस्बैंड।
0: जी तो पति देव सुनते हैं और आप भी साथ में सुनती हैं, है ना?
1: जी जी
0: जी तो ज्योति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है ममता, इसके बोले रहे ना रहे हम।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं किस सखी का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: वैष्णवी मुड़े।
0: वैष्णवी मुड़े, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नांदेड़ से।
0: जी वैष्णवी, बताइए नांदेड़ से कैसी हैं आप और कैसा है नांदेड़?
1: नांदेड़ तो अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ।
0: और बताइए क्या करती हैं आप, परिवार में कौन है?
1: परिवार में मेरा छोटा बच्चा।
0: हाँ हाँ।
1: और मम्मी जी है।
0: अच्छा, परिवार है मतलब भरा पूरा परिवार है।
1: हाँ, परिवार है।
0: और आप क्या करती हैं बताइए आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ, छोटा बेबी है, 5 महीने का।
0: ओह, ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, अभी तो आपको हर वक्त उसका ध्यान रखना पड़ता होगा।
1: हाँ।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ABCD मतलब गन गन गणपति वाला गाना,
0: ABCD फिल्म का। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है।
1: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश गोंडा से।
0: उत्तर प्रदेश गोंडा से क्या बात है?
1: आज मैम मेरी पहली बार कॉल लगी है ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: एक बात बताएं अनु जी, आपकी आवाज से ही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, और हम भी बेहद खुश हैं कि आपने कॉल लगाने की कोशिश की। क्या करती हैं आप, बताइए।
1: मैम मैं जॉब करती हूँ और तैयारी करती हूँ रेडियो के साथ मैच की।
0: जॉब कर रही हैं और तैयारी किस चीज की?
1: जिस जॉब पे हूँ ना उसी, और अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए।
0: अच्छा, तो प्रमोशन आपको मिल जाए इसके लिए आप कोशिश कर रही हैं और उसी की तैयारी कर रही हैं। जी जी
1: हाँ।
0: तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती होगी, कैसे क्या करना होता होगा?
1: मैम उसके लिए मतलब हाँ पढ़ाई करनी पड़ती है तो वो कर लेते हैं हम।
0: तो आप देखिए जॉब भी कर रही हैं और पढ़ना भी है क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तो कैसे समय निकालती हैं फिर पढ़ाई के लिए?
1: मैं तो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती हूँ और साथ साथ रेडियो भी सुनती रहती हूँ, और दिवस भारती में हमेशा सुनती रहती हूँ। यहाँ के कार्यक्रम मुझको बहुत अच्छे लगते हो, आज के फनकार हो गए, पिटारा हो गया, हेलो सहेली हो गया, बहुत सारे कार्यक्रम है जो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अरे वाह, यानी कि आप तो एक दिन मतलब कि दिन का जो हम 12 घंटा इस्तेमाल करते हैं ना काम काज करने के लिए, उसमें तो आप कई सारे काम कर लेती हैं। जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और रेडियो भी सुन रही हैं, क्या बात है। तो हम आपको आपके प्रमोशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई अभी से देते हैं अनु पांडे जी।
1: फूलों की ताजगी, चांदनी की चमक, विविध भारती रेडियो तो है खुशियों का कमल,
0: क्या बात है।
1: और मैम हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है तेरे नाम, और गाने के बोल है तुमसे मिलना बातें करना। आज ना हमको आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी आपसे बात करके बहुत ज्यादा आनंद आया अनु पांडे जी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, किससे बात हो रही है?
1: निशा कुशवाहा बोल रही हूँ मैम, निशागढ़ जिला अशोकनगर से।
0: अच्छा, बताइए निशा जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है, आप कैसी हो दीदी?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: दीदी ध्यानदार पिक्चर का सुनवा दीजिए, आएगा मजा बरसात का।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं, लेते हैं ये कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम है आरती डांगी है, मध्य प्रदेश जिला सागर ग्राम जमीन खामरिया से बोल रहे हैं।
0: खामरिया से बोल रही हैं आप, बताइए जिंदगी में सब कुछ कैसा चल रहा है और कैसा चल रहा है आपका शहर?
1: जिंदगी में कभी भी सब कुछ अच्छा है, शहर भी अच्छा है, लेकिन दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। अभी हमारी माँ का डेथ हुआ है दीदी, इसलिए अधिक दुखी है।
0: जी, हम समझ सकते हैं आरती जी की माँ का ना होना, यानी ये खालीपन किसी भी चीज, कोई धन कोई पद किसी से भी पूरा नहीं किया जा सकता, है ना?
1: जी दीदी, मेरा मायका है छिंदवाड़ा जिला का और सागर का ससुराल है यहाँ का, मतलब 350 किलोमीटर की दूरी है।
0: अच्छा, 300 किलोमीटर की दूरी है ससुराल और मायके के बीच में।
1: जी दीदी, हम बिल्कुल महाराष्ट्र के किनारे पे रहते हैं एकदम।
0: अच्छा, अब परिवार में कौन कौन है?
1: सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है और मेरी दो बेटा है, पति देव, हम सब लोग भारत पूरी परिवार से हैं।
0: आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज हम गीत सुनेंगे दीदी राजा और रंग फिल्म का, वो तो कितनी अच्छी है माँ के लिए।
0: जी, तो आपकी माँ को समर्पित ये गीत प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली जी,
0: जी। आज किसका कॉल लगा है, अपना नाम बताइए।
1: कृष्णा लोवंशी, जिला खंडवा से लगा मेरा फोन।
0: क्या बात है, आप क्या करते हैं?
1: खेती करती हूँ दीदी मैं।
0: अरे वाह, खेती का काम करती हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इस वक्त क्या आप खेत पर ही हैं?
1: दीदी, खेत में नहीं, घर पे हूँ और मक्का लगाई है दीदी मैंने।
0: मक्का लगाई है, तो कब तक इसकी कटाई हो जाएगी फिर?
1: ये अभी दीपावली तक होगी दीदी।
0: अच्छा, दीपावली तक।
1: मेरे दो लड़के हैं,
0: हाँ,
1: एक खेती करता है और एक लड़का बड़ा वाला मेडिकल पे है।
0: तो आप भी जाती हैं खेती करने?
1: जाती हूँ दीदी, मेरी बहू भी है,
0: हाँ, तो वो भी
1: वो
0: जाती
1: भी,
0: हैं।
1: हाँ दोनों जाते हैं।
0: अरे वाह जी, ये तो बहुत मेहनत का काम है खेती करना। कृष्णा जी, हमारे देश का तो आधार है किसान और खेत। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? हमें आपसे बात करके बेहद प्रसन्नता हो रही है।
1: गदर फिल्म का है दीदी, ऊर्जा काले कावा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म गदर का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताइए सहेली।
1: मैं अनीता वर्मा बोल रही हूँ, द्वारका, दिल्ली से। हाँ
0: दिल्ली से अनीता वर्मा जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, यहाँ पर भी सब ठीक है। और अपने बारे में बताइए अनीता जी।
1: हाँ मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ और हेलो सहेली में फोन करती रहती हूँ 2.5-3 महीने के बाद कि कब का नंबर लगता रहे।
0: जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 महीने का पूरा जो हम अनुरोध करते हैं, आपने वो समय का पूरा शांति से इंतजार किया और 2 महीने के बाद कॉल कर रही हैं।
1: हेलो सहेली, ये रीत भारती के सारे ही प्रोग्राम क्या क्या बताऊँ मैं, सभी बहुत पसंद है मुझे, इन्हीं के साथ मेरा काम होता रहता है।
0: जी बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप विविध भारती के सारे कार्यक्रमों को पसंद करती हैं। रेडियो तो सुनती ही हैं और सारा दिन आप संगीतमय, आपका दिन ये निकलता है। इसके अलावा और आप क्या करते हैं?
1: मैम घूमने का भी शौक है, 2-4 महीने बाद चक्कर लग ही जाता है, घूमने की बहुत शौकीन हूँ, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सूट साड़ी ये ज्यादा मुझे पसंद आते हैं, अपने इंडियन जो
0: जी, और
1: हमारे ये कपड़े
0: जी
1: हैं।
0: जी जी और दिल्ली तो प्रसिद्ध भी है ना शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए बिल्कुल यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें, हर प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं और आप उसका शौक भी रखती हैं। और देखिए, एक महिला को ये सारी चीज़ों का शौक होना भी चाहिए, आपको क्या लगता है?
1: हाँ जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला ही नहीं शौकीन होगी तो और कौन होगा,
0: जी
1: इसी तरह
0: हाँ
1: जचते हैं और कोई तो पहन नहीं सकता ये
0: बिल्कुल
1: सारी चीजें।
0: जी,
1: जी
0: इतनी सारी चीजें होती हैं हम महिलाओं के लिए पहनने के लिए। और जब शौक मन में रहता है ना, प्रसन्नचित रहता है, तो हम घर भी बहुत अच्छे से रखते हैं, खुद को भी खूब अच्छे से सुंदर बनाते हैं। और एक प्रसन्न वातावरण जो घर का रहता है, वो हमेशा सकारात्मक सोच के तरफ आगे बढ़ता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है अनीता जी। आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे सुनना है पर्दे के पीछे, ये फिल्म का नाम है, गाना बहुत ही अच्छा है, तेरे बिन जिया ना लगे, आ जा रे
0: बिल्कुल, चलिए तो शायद वो आ ही जाएंगे जिसके बिना आपका जिया नहीं लग रहा है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। ये कौन सी सहेली है, क्या नाम है आपका, अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम है शांति वारी। मैं उदयपुर वारियों की घाटी से बोल रही हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका शांति जी।
1: धन्यवाद।
0: जी अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी, तो घर के काम काज में दिन भर सारा समय निकल जाता होगा, है ना।
1: हाँ, निकल जाता है ना, दिन भर ज्वाइंट फैमिली है, तीन फैमिली एक साथ रहती है, रसोई एक ही है।
0: ये तो आज के जमाने में उदाहरण है आपका परिवार की, तीन परिवार एक साथ रहता है और आपने कहा रसोई भी एक ही है।
1: हाँ, एक ही है।
0: जी बहुत ही सुंदर बात है। तो जब इतना बड़ा परिवार है शांति जी, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना या कसरत करना या वर्जिश करना कहीं छूट जाता होगा।
1: नहीं, मतलब हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। तीनों भाई एक साथ रहते हैं, काम भी एक ही है, खाना भी मिलजुल के बांट लेते हैं। सुबह बड़े वाले बीच वाले 11 बजे बीच वाले बनाते हैं, सुबह 5 बजे का बड़े वाले बनाते हैं, शाम को मैं बनाती हूँ।
0: अच्छा, तो मिल बांट के आपने इस तरह से काम का बंटवारा कर लिया है। और अपने बारे में बताइए, और कैसे क्या सब चलता है दिन भर घर पर। परिवार इतना बड़ा है तो बच्चे भी सब होंगे,
1: है ना, बच्चे भी, मेरे 2 बच्चे, बड़े वाले के 2 बच्चे।
0: तो ये तो ऐसा खिलखिलाता सा परिवार है ना
1: हाँ,
0: जी।
1: और साथ में ननद भी रहती है, 27 साल हो गए ननद के साथ रहते रहते।
0: अच्छा, आपकी एक ननद भी साथ में रहती हैं।
1: हाँ,
0: शांति जी बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: फिल्म है करण अर्जुन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत है और आपका परिवार तो इस गीत पर पूरे तरह से उतर रहा है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली से जुड़ने के लिए, वे निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहला कॉल आप ही का लग जाए। और जिन सखियों से आज हमने बात की है उनसे ये अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। तो सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सुनने वाले सभी को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, 400-24662। एक और नंबर है 2867-0288, 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नायक, संपादन में सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सहेली दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज सुनिए अरुण शेखर की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में। आवाज ही पहचान है।

आज जब दूसरी पाली में माया क्लिनिक के लिए निकली तो उसका मूड कुछ ऑफ था, कारण कि आज फिर उसके ब्याह को लेकर घर में बगझक हो गई थी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर माया दुनियावी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रवेश कर गया था। वो भी आज की नई सोच के मुताबिक पहले सेटल हो जाना चाहती थी। आज शायद ही कोई लड़की चाहती है कि वो अपने खर्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहे, उसे अपनी हर जरूरत के लिए पति का मुंह देखना पड़े। इसी सोच में वो भी थी, नए क्लिनिक की शुरुआत की थी, वह भी चल नहीं रेंग रहा था। कोई भी बिजनेस सेट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। माया इसीलिए अभी विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए मन नहीं बना पाई थी, पर हर बार मां को मना करना उसके लिए भारी होता जाता था, क्योंकि हर मां इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है, माया क्या करे क्या न करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे, उनका उसे ध्यान ही न रहा, क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था, चिट्ठी आई है। मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं, दिल के तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं, दिल की तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में, अब जिद छोड़ो मुंह ना मोड़ो खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है चिट्ठी आई है।

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद तो उसे भी नहीं आती, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है, वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें, नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें, सलाद में ककड़ी जरूर खाएं, रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप, और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। FM के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं ये गीत।

ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती, खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं न कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सची तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते, कुछ गानों का जिक्र होता। यह सुनकर माया को भी अच्छा लगता है।

डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीजें देखने वाले की नजर अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतजार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा। एफएम के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर यह जुल्म

खुशियों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

0: कभी तो हंसाए।
1: इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। माँ ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? माँ सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। माँ जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है, पर माँ को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिससे प्रेम कर बैठी है वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है, उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है।

0: जाए दिन।
1: आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा, वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है। आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है आपके मीठे मीठे खातों का, यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे। और मेरी आवाज तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं, लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत, और भी बातें।

माया को यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला, उसमें उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ट्राई किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। यह संदेश किसी महिला की आवाज में था। एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली, चुप कर, समीर को बुला, समीर को बुला। पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया। उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला, कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शो खत्म हो गया। अब कब आएंगे? ये हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें।

माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, क्या पागलपन है, वो यहां कैसे आ सकता है, मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, पर मेरे खत उसे मिले ही हैं, उसकी आवाज में मैंने उसको महसूस किया है।

ये बात माया अच्छी तरह जानती थी कि वह अपने साथ छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया, फिर से वही आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माया का धैर्य जवाब दे रहा था।

आज जब माया क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मिल लेना। परंतु माया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठहर कर माँ को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। माँ ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी।

आकाशवाणी। नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये है आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूँ सभी श्रोताओं का। हम लेकर हाजिर हैं युवा आवाज़ और युवा अंदाज से भरपूर कार्यक्रम युववाणी। आज युववाणी प्रस्तुत करता है आशुतोष तिवारी और मान्या गढ़वाल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन पर महाकाल की पावन नगरी के सभी ऊर्जावान युवा श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज तारीख है 11 सितंबर 2026, दिन है शुक्रवार और स्टूडियो में आपके साथ मौजूद हूँ मैं आशुतोष
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त मान्या। आज की है शाम बहुत खास है श्रोताओं, बेहद रोमांचक और साथ ही बहुत ही उपयोगी होने वाली है आशुतोष, क्योंकि आज हम सिर्फ आपस में बात नहीं करेंगे बल्कि हमारे प्यारे श्रोता सीधे हमारे साथ स्टूडियो में लाइव जुड़ेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा मान्या, जब सीधे हमारे दोस्तों की आवाज इस माइक और स्टूडियो के जरिए पूरे देश में गूंजेगी तो कार्यक्रम की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। और आज का विषय भी ऐसा ही है जो हमारी सुरक्षा सेहत से सीधे तौर पर जुड़ा है। कल यानी 12 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाएगा विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस
1: और इसी खास अवसर की पूर्व संध्या पर आज युववाणी के इस लाइव फोन इन मंच पर हमारा बेहद विचारणीय और संवेदनशील विषय है बचाव का पहला कदम यानी कि फर्स्ट एड और आपातकालीन प्राथमिक उपचार।
0: मान्य, प्राथमिक उपचार कोई बहुत बड़ी डॉक्टरी डिग्री की मांग नहीं करता बल्कि यह उस नाजुक वक्त में आपकी मानसिक शांति, सूझबूझ और त्वरित निर्णय लेने की परीक्षा लेता है। एम्बुलेंस या अस्पताल पहुंचने से पहले का वो पहला घंटा जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, उसमें उठाया गया आपका एक सही कदम किसी की अनमोल जिंदगी बचा सकता है।
1: और इसलिए आज हम अपने तमाम साथियों से उनके विचार जानना चाहते हैं। क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा वाक्या आया है जब आपकी किसी छोटी सी मदद या प्राथमिक उपचार ने किसी दोस्त या अनजान की जान बचाई हो? क्या आपके पास कोई ऐसी उपयोगी टिप है जो आज हमारी हजारों साथियों के काम आ सकती है?
0: तो देर मत कीजिए दोस्तों, उठाइए अपना फोन और सीधे हमारे साथ अपनी कहानी और विचार साझा कीजिए। हमारा दूरभाष क्रमांक है 4054191, साथ ही उज्जैन का एसटीडी कोड है 0734।
1: श्रोताओं, हम एक बार फिर नंबर दोहरा रहे हैं 0734-4054191। हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं और हमें इंतजार है आपकी घंटी बजने का। इसी के साथ श्रोताओं, हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए उनके साथ बात करते हैं।
0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी सर, नमस्कार सर, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा उज्जैन से।
0: लोकेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आपके आकाशवाणी से जुड़े हुए रहते हैं।
0: जी बहुत बढ़िया। लोकेंद्र जी, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हमारी सेहत और सुरक्षा से बहुत गंभीर तरीके से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में जी, जो प्राथमिक चिकित्सा होती है। तो आप जी आप हमें बताइए कि जो आपका सैलून केंद्र है उसमें आपने ऐसी कौन सी चीजें रखी हुई हैं जो किसी भी आपातकालीन घटना में आप फटाफट से उपयोग कर सकते हैं?
2: हाँ जी सर जी, ये तो मेरा सैलून है नानाखेड़ा बस स्टैंड पे, और ऐसे भी जैसे कि फर्स्ट एड जो बॉक्स रहता है, आजकल आपने देखा होगा कि जैसे कि कार रहती है तो कार के अंदर उसमें वो बॉक्स दिया जाता है जिसमें डिटॉल है और जो रुई है, कॉटन है और कुछ दर्द

0: निवारक टेबलेट्स और फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर सभी उपलब्ध रहती है। और मेरा तो सैलून है, तो मैं तो सैलून में सेफ्टी वापरता हूँ, जैसे सेविलोन है, डिटोल है, इस प्रकार के जो ये रहते हैं दवाइयाँ, ये मैं रखता हूँ। और कभी कभी वो जो बैंडेज भी रखते हैं साथ में, कभी कोई कट लग जाए तो उसको बैंडेज को लगा देते हैं, जैसे हमारे भी काम करते हुए कभी हाथ में लग जाता है, सैलून है तो
1: जी।
0: तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। और जैसे कई दुर्घटना, अपन कहीं जाते हैं ट्रेवल करने के लिए बाहर, तो किसी को दुर्घटना हो जाती है, तो ये बॉक्स आपके पास में तो होना बहुत ही जरूरी रहता है। कार में भी होना चाहिए, आपके पास टू व्हीलर है उसमें भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: अगर
1: जी,
0: और रास्ते में कहीं आपको मतलब देखा है कि कहीं कोई सड़क पर वाहन चलाते हुए गिर भी जाता है, जैसे मामूली खरोचे आती हो उसको, तो उस समय पे प्राथमिक उपचार के लिए ये बॉक्स होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई लोकिन जी। और इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक जो प्राइमरी जो हमारा फर्स्ट एड किट होता है, सबसे प्रमुख रूप से उसके अंदर क्या क्या सामान आप रखना चाहेंगे, कम से कम क्या चीजें तो हर घर में होनी ही चाहिए।
0: हाँ, वो तो ऐसे भी हर घर में रहती है, जैसे डिटोल है, और जो मैंने आपको बताया कि बैंडेज है, और मतलब कॉटन है, और जो बांधने की पट्टी आती है व्हाइट कलर की, वो भी रहती है घर में। ये चार प्रकार की चीजें तो हर घर में आपको उपलब्ध रहेगी। यदि बैंडेज भी रहेगा जो छिकाने की आती है,
1: जी
0: बोतल चलाने के लिए सिंज होता है, बोतल होती है, निडिल होती है, उसके साथ केनेला भी होता है, ये चीजें घर में रहती है।
1: जी जी जी बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छी बात हमें
0: और
1: बताई जी।
0: कोई जैसे कि घर में बुजुर्ग रहते हैं, मेरी माताजी 85 ईयर ओल्ड के, तो मेरी माताजी को अक्सर कभी कभी सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, उनको बॉटल चढ़ाना पड़ती है मुझे, तो मैं वो किट रखता हूँ हमेशा मेरे पास में। और एक और सजेस्ट है मेरा कि जैसे कि कहीं कहीं पे अपन देखते हैं किसी व्यक्ति को बाहर रोड पर मूर्छित होकर गिर जाता है, या तो हो सकता है कि उसको अटैक आया हो या कोई ऐसी समस्या हो, तो सबसे पहले ये भाव पे कि आप CPR दें उसको, तो वो CPR से उसकी जान बच सकती है, या प्राथमिक उपचार से CPR देने की कोशिश करें सबसे पहले। उसके बाद जब तक कोई वाहन मिलता है आपको, जल्दी से उसको तुरंत वाहन में डालें और हॉस्पिटल की ओर ले जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल लोकिन जी, आपने बहुत अच्छी, वाकई बहुत अच्छी बात हमसे आपने की और हमें बताया कि किस प्रकार से CPR एक हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी हो सकता है, और फर्स्ट एड का बहुत प्रमुख हिस्सा है कि इस प्रकार के स्किल हमें आए CPR देना या किसी प्रकार से व्यक्ति की मदद कर पाना। आपसे बात करके हमें
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: तो चलिए श्रोताओं, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के पहले गीत की ओर।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: आइए श्रोताओं, जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले कॉलर से। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
3: सर जी, प्यार अते सत्कार जी, सत श्री अकाल जी।
2: सत श्री अकाल जी। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
3: सर जी, मैं जी पिंड मौड़खुर्द विलेज मौड़खुर्द डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से डीजी कुमार से बोल रहा हूँ। सर जी,
4: हमें आपका नाम सुनाई नहीं दिया, क्या एक बार आप फिर से दोहरा सकते हैं?
3: हाँ जी, हाँ जी बेटा जी, हमारा नाम है बेटा जगजीत मट्टू।
4: नमस्कार जगजीत जी,
2: कैसे हैं आप?
3: ठीक ठाक साहब जी, तुम दसो जी, थोड़ी सेहत जी, फैमिली साथ
2: जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। जगजीत जी, हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड के बारे में, जो हमारे घरों में कुछ ऐसा छोटे मोटे दवाइयां होती हैं, जो बैंडेज डेटॉल वगैरह हम साथ में रखते हैं, जो कि बिल्कुल किसी घटना दुर्घटना होने पर सबसे पहले हमारे हाथ में आते हैं और हम उन चीजों से अपना उपचार कर सकते हैं। तो जगजीत जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप क्या करते हैं?
3: सर जी, जब हमारे पति है जी, हम फार्मर का काम करते हैं जी
2: जी।
3: जब सर जी कोई माड़ी मोटी दुर्घटना हुई है, हम हमारे ना गांव में नजदीक एक छोटा सा डॉक्टर होता है जी, गांव में उसके पास जाते हैं, जो घर की दवाई होती है वो नहीं बताते सर जी। जी
2: जी जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी और चीज में अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। जगजीत जी, जैसे आपने बताया कि आप किसान हैं, आप किसानी का कार्य करते हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे जो आपका जो खेत होता है, उस खेत पे एक छोटा सा कमरा होता है, उस कमरे में हम थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखते हैं हमारी खेती किसानी का, तो वहां क्या आपने ऐसा कुछ रखा हुआ है, कोई दवाई, कोई किसी प्रकार की कोई बैंडेज या किसी प्रकार का कोई सामान जो कहीं कोई कट लग जाए या खरोंच लग जाए तो आपके काम आ पाता हो?
3: हाँ जी सर जी, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है जी। जो जी हमारी मल्लो पट्टी होता है, वो मल्लो पट्टी सरदोस्ते की दवाई जी, जो आम साढ़े घर में पड़ी होती है सर जी।
2: जी जी जी,
3: जब कोई माड़ी मोटी जिमें जी काम करते को कोई माड़ा मोटा कोई ठंड लग जाता है जी पैर के, वो घर में गर्मी काम कर लेते हैं जी, वो निके निके काम जी।
2: जी जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई किस प्रकार से आपके पास में अपने प्राथमिक उपचार के लिए सामान उपलब्ध होता है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा जगजीत जी, आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान्य, जब भी प्राथमिक चिकित्सा किट तैयार करने की बात आती है तो उसमें सबसे पहले हमारे पास पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन और रोगाणु रहित यानी कि स्टरलाइज्ड गॉस पैड जरूर होना चाहिए। जैसा कि हमें हमारे श्रोता जगजीत सिंह जी ने भी बताया कि हमारे पास मलहम पट्टी होना चाहिए जिसमें आयोडीन और गॉस पैड आता है। खेलकूद या दैनिक कार्यों में होने वाले किसी भी छोटे कट या खरोंच पर यह संक्रमण रोकने का सबसे प्राथमिक और सुरक्षित साधन है।
5: ये तो बहुत सही बात कही आपने आशुतोष। घाव को साफ रखकर हम शरीर को स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होने का अवसर देते हैं। आपकी समय पर दिखाई गई यह सावधानी एक सामान्य चोट को गंभीर संक्रमण बनने से रोकती है श्रोताओं, और यही जागरूकता जो होती है वो सबसे सकारात्मक शुरुआत होती है किसी भी ऐसी सिचुएशन में।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा मान्या। आइए बात करते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले श्रोता से। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और मौसम भी चल रहा है और आपका कार्यक्रम भी चल रहा है।
0: जी जी राकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मौसम बहुत सुहावना है आपके यहाँ पे। और सुहावना मौसम के साथ हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक हमारी सेहत से, हमारी हेल्थ से बहुत ही गंभीर रूप से जुड़ा हुआ है। राकेश जी, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में, जो हमारे घर में जो किट होती है जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत सामान रखते हैं दवाई का, और जो छोटी छोटी बैंडेज होती है, और जो
1: जी
0: डेटॉल जैसी कुछ हमारे पास में, जो एंटीसेप्टिक लोशन वगैरह होते हैं। तो आपके घर में ऐसा कुछ है जो किसी प्रकार की खरोंच लगने पर या किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर सबसे पहले आप उपयोग में ला पाते हो?
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी हमारे पास कीटनाशक जो कीटनाशक नहीं और किट जो ऐसी दवाई है, ये मानो कि अगर मानो कि अचानक चोट लगी, सबसे बड़ी बात ये जैसे कि हमारा अभी एक सीजन चल रहा है घास काटने का,
0: जी
1: तो घास काटने का सीजन चल रहा है तो इसमें क्या होता है हमें घास काटना पड़ता है। कई बार घास काटते काटते जो है दराटी से जो है अपना हाथ भी कट जाता है, कई बार अचानक कट जाता है, तो ऐसे में जो है जो जिस जो है जो हाथ कट जाता है तो उसके लिए जो है जो जख्म को पूरा करने के लिए तो दवाई हमें उपलब्ध होनी चाहिए, तो फिर उसको हम लगा देते हैं। तो ऐसी चीजें हैं हमें चलाते हैं, उसको कम उपयोग करते हैं, तो ऐसी चीजें हमें रखनी चाहिए। और कई बार जैसे हिमाचल में तो ज्यादा काम पहाड़ों में ये होता है, जैसे कि घास काटना, लकड़ी काटना, ये चीज होती है, कई बार चोट भी लग जाती है, कई बार हमें कटने का जो है बिल्कुल डर रहता है।
0: जी राकेश जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी कि आप इस प्रकार की चीजें अपने पास रखते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ घास काटने का या जो लकड़ी काटने का काफी कार्य होता है, तो क्या कभी आपके साथ या आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई जिसमें इस प्रकार का कुछ हुआ हो कि घास काटते समय किसी प्रकार की दुर्घटना हुई? और अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया था?
1: जी जी जी एक जैसे जैसे आप तो मशीन आ गई घास काटने की, पहले एक दिन क्या हुआ तो घास काट रही थी तो मेरी मदर तो उनका हाथ कट गया पूरा पूरा का पूरा
0: जी।
1: तो हमने ऐसे क्या किया, सबसे पहले तो दवाई लगाई, पहले तो खून रोकने की कोशिश की, जैसे कि जो मस्जिद की तीलिया है तो उससे हमने थोड़ा क्या बोलते थोड़े उसका थोड़ा उसमें उसको जलाया, तो थोड़ा और थोड़ा जला के उस हमने रोका, तो फिर हमने जो है उसमें पट्टी की है, जैसे कि वो क्या बोलते पट्टी की है तो 5 मिनट के लिए जो सेलो टेप होता है तो उसको हमने जो लगाया है, उसके बाद फिर लगाया तो थोड़ा आराम हो गया, तो फिर हम अस्पताल से गए, तो फिर अस्पताल से दवाई दे दी, तो फिर
0: जी राकेश जी, जी जी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपने किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर सबसे पहले आपके पास जो प्राथमिक उपचार उपलब्ध था वो किया और फिर अस्पताल गए आप। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी धन्यवाद।
0: मान्य हमारे घरों की जो रसोई होती है उसमें काम करते समय अक्सर ऐसा होता है कि गरम तेल के छींटे पड़ जाते हैं या उबलता हुआ पानी गिर जाता है, ये बेहद आम बात है। इसी स्थिति में टूथपेस्ट या घी लगाने के बजाय जले हुए हिस्से को तुरंत 10 मिनट से 15 मिनट तक सादे बहते नल के पानी के नीचे रखना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा आशुतोष आपने। सादा पानी जो होता है त्वचा की भीतरी परतों को गहरी क्षति से बचाता है और जलन जो होती है उसे फौरन शांत कर देता है। आपकी यह वैज्ञानिक समझ और शांत व्यवहार श्रोताओं किसी अपने को स्थायी निशान और गहरे दर्द से बचा सकती है।
0: बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: चलिए श्रोताओं, इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है?
1: हेलो।
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका स्वागत है। आप कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं दुल्हे सिंह यादव बोल रहा हूँ, ग्राम बादशाह, जिला आगरमालवा।
0: जी दुल्हे सिंह जी।
2: दुले
0: नमस्कार दुल्हे सिंह जी,
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर जी, आप कैसे हो?
2: बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह जी, मौसम कैसा है आज आपके यहाँ पे?
1: ये मौसम तो सर खुला हुआ है, धूप निकली हुई है और बादल आते हैं, ऐसे छांव कर जाते हैं और फिर खुल जाता है। ये उज्जैन में और यहाँ पे ऐसा एक जैसा ही मौसम है सर।
2: जी दिलीप सिंह जी, इस बदलते और इस धूप आती जाती मौसम के बीच में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आज का हमारा विषय है फर्स्ट एड के बारे में, तो कई प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो हमारे घर पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम फर्स्ट एड के लिए रखते हैं, और जब अचानक से मौसम बदलता है तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है और हम उन दवाइयों का, उन चीजों का उपयोग करके अपना प्राथमिक उपचार कर पाते हैं। तो दिलीप सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके घर पे ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो आपने अपने इमरजेंसी के लिए और अपने बिल्कुल हाथों हाथ उपयोग में आने के लिए रखी हुई हैं?
1: सर जी, ये गोलियां होती है, ये दर्द की गोलियां भी रखते हैं हम, सिर दर्द होता है किसी का तो, और वहां से चलकर ये हाथ कट जाता है तो पट्टी का सामान भी रखा हुआ है घर पे तो सर।
2: जी दुल्हे सिंह जी, और इसी के साथ हम हमसे जानना चाहते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे जो रोड पे दुर्घटनाएं हो जाती हैं और एक्सीडेंट वगैरह कुछ प्रकार का हो जाता है जो कि आकस्मिक रूप से होता है, तो क्या कभी आपके सामने या आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई हो और आपने उस दौरान उन्हें इमरजेंसी में कोई हेल्प की हो, या आपके सामने किसी प्रकार की इमरजेंसी में हेल्प की गई हो? क्या आपके साथ ऐसा कोई किस्सा या वाकया हुआ है?
1: सर जी, ये मैं तो वहाँ रोड पे तो नहीं रहता हूँ, मैं तो जंगल में रहता हूँ सर। तो मेरे बेटे जो है वो दुकान पे रहते हैं, वहाँ पे दुकान है अपनी चामरदा में सीमेंट की
2: जी।
1: तो उनके सामने जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उनकी सारी व्यवस्था करके उनको अस्पताल पहुँचा देते हैं सर।
2: जी दिलीप सिंह जी, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई कि आपके जो बालक हैं वो इमरजेंसी में लोगों की हेल्प कर देते हैं।
1: वो कई बार पहुंचा है सर, वो एक बार तो वो कहाँ मालूम नहीं कोटा साइड के थे, वो घर पे हमसे मिलने आए सर। कोई पुलिस वाला था, उनका एक्सीडेंट हो गया था
2: जी,
1: तो उन्होंने उनकी मदद की और अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वहाँ नाम लिखते हैं जो भर्ती करवाते हैं उनका, तो उन्होंने पूछा कि हमको भर्ती कौन कर गया, वो तो बेमस थे। तो फिर वो हमारे घर आके उन मेरे बच्चे से आके मिलके गए सर।
2: जी जी दुल्हे सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम इस प्रकार की घटनाओं में किसी की मदद करते हैं तो व्यक्ति हमारा आभारी होता है, हमसे पुनः मिलने भी आता है। दुल्हे सिंह जी, इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे घर में जो हमारे किचन में कई बार छोटी मोटी सी घटनाएं हो जाती हैं कि तेल छलक जाता है या गर्म पानी हमारे हाथ के ऊपर गिर जाता है, तो ऐसी अगर कोई घटना आपके यहाँ पे होती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उस चीज़ का क्या उपाय होता है आपके पास में?
1: सर यदि गरम दूध के चाय किसी के ऊपर गिर जाती है ज्यादा, तो फिर उसको दूध जो होता है ठंडा
2: जी,
1: कहीं दही होता है रखा हुआ या घी होता है, उसको लगाने से ठंडा पड़ जाता है सर।
2: जी जी जी,
1: ये उपचार भी अपनाते हैं सर बहुत बार गांव में
0: जी। अधरीश, जैसा कि आपने बताया कि आप जंगल की

0: क्षेत्र में काम करते हैं, जहां नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भी बहुत कई किलोमीटर दूर हो सकते हैं, तो ऐसे
1: में हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र है मैडम
0: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: स्वास्थ्य केंद्र
0: जी, ऐसे में मेरा आपसे सवाल है कि जब आप जंगल में काम करते हैं तो जैसे कि कोई जहरीला कीड़ा तथा या बिच्छू या सांप काट ले, तो आप लोग अस्पताल पहुंचने तक तुरंत क्या प्राथमिक उपचार अपनाते हैं? लाइक पहुंचने से पहले एक ऐसा सिचुएशनल क्राइसिस बनता है तो आप उससे पहले क्या करते हैं बचाव के लिए?
1: देखो, मेरे सामने अभी हमारे गांव के आसपास और गांव में भी हुए ऐसे सर्प के डसे हुए हैं, तो हमारे आगर में बस स्टैंड पे ये खान साहब है बुड़लाई वाले, तो उनसे झड़वाते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। उनके कई केस खेल नहीं हुए, एक घंटे आधे घंटे के पहले पहले आदमी वहाँ पहुंच जाए तो वो ऐसा उनके घर का ऐसा वरदान है कि वो मतलब जैसे ही हाथ फेरते लिम की डाली तोड़ के तो वो आदमी होश में आ जाता है। मतलब ये देखा हमने
0: जी,
1: अगर नहीं ये वो बुड़लाई वाले खान साहब है करके, तो उसके पास मेरे बेटे दो तीन को ले गया वहाँ पे सर्प काटे हुए को, और वो ठीक भी हो गए।
2: जी जी,
1: और जो अस्पताल में भर्ती किए गए थे, अस्पताल ले जाया गया, वो लोग मर चुके हैं दीदी, वो ठीक नहीं हुए थे।
2: जी दिनेश सिंह जी, कई बार घटनाएं हो जाती हैं और हमें हर प्रकार की घटनाओं से डील करना आना चाहिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगर किसी को सांप काट ले आशुतोष, तो कभी भी उस जगह पर चीरा नहीं लगाना चाहिए और ना ही मुंह से जहर चूसने की गलती करनी चाहिए। पीड़ित को शांत रखकर डंक वाले अंग को पूरी तरह स्थिर रखना चाहिए, ताकि जो जहर होता है ना वो शरीर में तेजी से ना फैले।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैंने आपने। अंग को दिल के स्तर से थोड़ा नीचे रखना चाहिए, जितना जल्दी हो सके नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाना चाहिए जहां एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध होता है। आपकी शांति और तुरंत लिया गया फैसला पीड़ित के जीवन को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी कुंजी है। आइए श्रोताओं, इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आइए श्रोताओं जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर, मैं आपका नियमित श्रोता गुजरात से धीरज रबारी बात कर रहा हूँ।
0: धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे और आकाशवाणी उज्जैन परिवार एवं युवाणी टीम सभी सकुशल होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, आपका प्यार ही है। धीरज जी, हम आपसे आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय बेहद गंभीर और हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में, जो प्राथमिक उपचार होता है जो किसी भी घटना दुर्घटना होने पर हम सबसे पहले करते हैं। धीरज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जो कार्यस्थल है, आप जहाँ पर काम करते हैं, या जो आपका निवास स्थान है, जो आपका घर है, वहाँ पे किसी प्रकार की फर्स्ट एड किट या इस प्रकार का कुछ आपने सामान रखा हुआ है जो इमरजेंसी के समय काम आ पाता हो?
1: जी सर, हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी है और जहाँ कार्यस्थल है वहाँ भी फर्स्ट एड का सामान रखा जाता है। और देखा जाए तो हमारे गुजराती में उसको प्राथमिक सारवार कहते हैं। तो देखा जाए तो गांव में, देहातों में जो छोटे मोटे कहीं घाव लग जाते हैं, कहीं किसानी में कोई काम करते के वक्त कहीं लग जाता है, तो वहाँ प्राथमिक उपचार से यानी वो जो भी घाव है वो मिट जाता है। अगर कोई गंभीर मामला हुआ तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जैसे देखा जाए तो देहातों में बहुत जड़ी बूटियां होती है जिसे घाव मिट जाते थे। अभी शहरों में भी यानी जो मेडिकल लाइन के अनुसार कई प्राथमिक उपचार होते हैं तो वो करके फिर हम दवाखाने इस अस्पताल जाते हैं। तो प्राथमिक उपचार में आपने जो विषय रखा उसके अनुसार कई जगह पर मरीज ठीक हो जाता है और कभी अगर ज्यादा जरूरत हो तो उसको यानी एडमिट करना पड़ता है। लेकिन ये प्राथमिक सारवार जो फर्स्ट एड है वो बहुत अगत्य का यानी प्रथम चरण है दर्दी को अच्छा करने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई। और इसी के साथ धीरज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि कई बार जो प्राथमिक उपचार होता है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी कार्य करता है कि जब तक हम अस्पताल पहुंच रहे हैं तब तक के लिए वो हमारी काफी मददगार साबित होता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसे आपके हिसाब से क्या प्राथमिक उपचार किस हद तक सीखना चाहिए? जैसे प्राथमिक उपचार में कई सारी चीजें होती हैं, CPR जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लोगों को अटैक के समय काफी काम आता है, तो युवाओं को इस ओर कितना ध्यान देना चाहिए?
1: सर, मेरी मुंह की बात आपने छीन ली। यही अभी भारत में यानी दूसरे देशों में ये ज्यादा प्रश्न सता रहा है जो हार्ट अटैक आते हैं। तो उसके लिए जो आपने बोला वो हमारे आज के युवा वर्ग के जो विद्यार्थी है, जो अपने अनुभवी कोई डॉक्टर के पास या कोई जानकार के पास यही यानी सीख लेना चाहिए, ताकि कई जगह पर हाईकोर्ट यानी हार्ट अटैक का जो भी मरीज को आता है तो उनको तुरंत प्राथमिक उपचार के तौर पर ये किया जाता है। तो उसके कई मरीज, कई दर्दी बच भी गए हैं और ये एक अनोखा एक तरीका है। और इसके बाद वो जो भी मरीज है उसको यानी अस्पताल रिफर किया जाता है। लेकिन ये प्राथमिक कार्रवाई में कई लोग इस ये जो जो कार्य है उससे बच जाते हैं। तो बहुत यानी सटीक उपचार है और इसको सीखना चाहिए। मेरे ख्याल से इसके तालीम वर्ग भी रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हार्ट अटैक है उसको बताने के लिए। आपने भी सही बोला और मेरे ख्याल से हर राज्य सरकार को इसके बारे में लंबी सोच रख के इसके बारे में तालीम वर्ग रखने चाहिए सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और ये वाकई हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए, युवाओं के लिए एक जरूरी टिप की तरह काम करेगी। धीरज जी, आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
0: मान्य, यदि अचानक कोई साथी हमारा गिर पड़े और उसकी सांस व नब्ज बंद महसूस हो तो बिना एक पल गवाए CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रेजिस्टेशन शुरू करना चाहिए। दोनों हथेलियों को छाती के बीच रखकर लगातार मजबूत गति से दबाना जीवन रक्षक होता है।
2: बिल्कुल सही कहा आशुतोष आपने। जब तक विशेषज्ञ मेडिकल टीम नहीं पहुंचती, आपके हाथों का वह नियमित दबाव मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह बनाए रखता है। संकट के पलों में आपका यह अदम्य साहस किसी इंसान को मौत के मुंह से खींचकर नया जीवन दे सकता है। श्रोताओं,
0: बिल्कुल सही कहा मान्या। आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आइए श्रोताओं जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी नमस्ते आशुतोष जी, मैं प्रेम से सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: आशुतोष जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: मैं सुन रहा हूँ आपका कार्यक्रम में, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं श्रोता को और श्रोता भी बड़े अच्छे अच्छे विचार साझा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल प्रेम सिंह जी, आपसे बात करके हमें बहुत ही मजा आएगा। प्रेम सिंह जी, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा विषय आज का प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड के बारे में है। और जैसा कि हमें विदित है कि आप बगीचा है आपका बहुत बड़ा, काफी खेत वगैरह है, तो जो जो खेत होता है, जंगल के आसपास के स्थान होते हैं, उन स्थानों पर क्या होता है कि बहुत जल्दी हमें मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो आपने अपने आसपास ऐसी कौन सी चीजें रखी हुई हैं फर्स्ट एड के तौर पर, जो किसी भी इमरजेंसी की घटना में आपके काम आती हैं?
1: जी बिल्कुल, एक तो जब आप रहता है घाव पे लगाने का जो ट्यूब आता है ना
0: जी,
1: वो ट्यूब रखा हुआ है, एक पट्टी जो बांधते हैं वो सफेद कपड़ा वाला, वो पट्टी रखी हुई है, और एक हाइड्रोजेल आता है जो जिससे अगर घाव हो जाता है ना, उससे अच्छी तरह से साफ करने के बाद में ट्यूब लगा के पट्टी लगाई जाती है। ये तीन चीजें तो अवेलेबल होती है घर में। उसके अलावा अगर ऐसे घाव जब पकने के तादार पे आ जाते हैं, तो जब डॉक्टर को मतलब घाव होने के बाद में डॉक्टर से तो इलाज लेता ही है, लेते ही सभी लोग, लेकिन उस समय पर घाव को अच्छी तरह से साफ करके धो ले, उस पर पट्टी बांध ले और उस पर पानी न लगने दे।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई प्रेम सिंह जी। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार की जो सामान होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो कहीं कहीं हमारे काम आती हैं, और उसके साथ ही कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर भी कुछ स्किल्स ऐसी डेवलप करना पड़ती हैं जो कि फर्स्ट एड के तौर पर हमारे काम आ सकें। जैसे कि हार्ट अटैक के समय हम CPR कर सकते हैं, या खैर वो तो बहुत बड़ी बात होगी, हम छोटी बातों की अगर बात करें तो अगर कहीं कुछ जल जाता है, किसी प्रकार का बर्न हो जाता है, या

0: हम खेत में चलते हैं तो कई बार हमारे पाँव में मोच आ जाती है, पाँव मुड़ जाता है, तो ऐसी अवस्था में आप क्या करते हैं?
1: जी जैसे कि बताऊँ, अगर किसी के पाँव में मोच आ जाए, हाथ में मोच आ जाए, तो थोड़ी सी हल्दी लिए और थोड़ा सा जो रिफाइंड तेल होता है ना, उसमें एक चुटकी भर हल्दी, मतलब एक चम्मच के लगभग छोटा चम्मच हल्दी डाल के उसमें तेल को गर्म करके जहाँ पर मोच आती है ना, वहाँ पर थोड़ी सी मालिश कर ले अच्छी तरह से मिलाकर, तो उसमें थोड़ा आराम मिलता है। और डॉक्टर को तो दिखाना ही दिखाना कंपलसरी होता है, बट ऐसे थोड़े घरेलू नुस्खे अपना कर, मतलब अपने उस समय पर थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं।
0: जी प्रेम सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो हल्दी होती है वह हमारे लिए कई प्रकार से फायदेकारक होती है, बहुत लाभदायक होती है। हल्दी का उपयोग करना और हल्दी का सेवन करना भी कई बार हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। प्रेम सिंह जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे जो गर्मी का मौसम होता है उसमें कई बार क्या होता है कि हम पानी का पूरा सेवन नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, और डिहाइड्रेशन हो जाता है या किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, तो आप किसी प्रकार का ORS सोल्यूशन अपने पास रखते हैं, या अगर ORS उपलब्ध नहीं है तो आप जो हम घरेलू घर में बना पाते हैं शकर नमक का, तो ऐसा आप कुछ कर पाते हैं क्या?
1: हाँ जी बिल्कुल, शक्कर नमक का भी बना सकते हैं, और एक नींबू की शिकंजी आती है ना, क्योंकि हमारे पास में तो बगीचा है, हमारे घर के पास में हमने नींबू का भी पेड़ लगा रखा है, तो उसमें नींबू भी आते हैं, तो वहाँ से नींबू तोड़ के उसकी शिकंजी बना के, मतलब जब पानी की कमी होती है या ऐसे, मतलब कहीं बाहर से आते हैं ना, एकदम से धूप लग रही है, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद में एक गिलास शिकंजी नींबू की पी ले तो मतलब काफी अच्छा फायदा होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल प्रेम सिंह जी, ये वाकई प्राथमिक रूप से हमारी सेहत को बनाए रखने के लिए बहुत ही कारगर तरीके हैं। और प्रेम सिंह जी, आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद आशुतोष जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आकाशवाणी उज्जैन में मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ। थैंक
0: जी बहुत अच्छी बात है, हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, धन्यवाद। मान्यो, फर्स्ट एड बॉक्स में जैसा कि अभी हम बात भी कर
1: जी
0: रहे थे
1: जी
0: प्रेम सिंह जी से, कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट यानी कि ORS, उसके पैकेट्स होना बहुत ज़रूरी होता है। मालवा की तेज़ धूप में चक्कर आना आम बात है, भारी डिहाइड्रेशन हो या पेट की खराबी हो या शरीर में ज़रूरी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने का काम करता है ORS।
1: बिल्कुल सही कहा आशुतोष आपने, साफ पानी में घुला ORS का एक घोल शरीर में खोई हुई ऊर्जा और स्फूर्ति को तुरंत लौटा देता है। सही समय पर दिया गया यह सरल घोल किसी भी अस्वस्थ आदमी के साथ या फिर कोई भी अस्वस्थ साथी हो हमारा, उसको जो कमजोरी रहती है उसको

0: आइए श्रोताओं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से।
1: बिल्कुल
0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: योगेश जी, आज आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
2: अभी तो बादलों से घिरा हुआ है, लेकिन बारिश नहीं है।
0: जी योगेश जी, जल्द ही बारिश भी होगी, मौसम में ठंडक भी आएगी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में, जो प्राथमिक उपचार का सामान हमारे घरों में होता है। तो योगेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जो कार्यस्थल, आपका वर्क प्लेस है, ये जो आपका घर है, वहाँ पे आपने ऐसी कौन सी चीजें रखी हुई है जो प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड के रूप में आपके काम आती है?
2: सबसे पहले तो डेटॉल है, रुई है, और जो थोड़ा सा लगने पर जो क्रीम वगैरह अपन लगाते हैं, जैसे कोई कट छिल जाए उसके लिए
0: जी।
2: ये चार पांच चीजें बहुत आयात हम रखते ही हैं भैया।
0: जी योगेश जी, योगेश जी हम आपसे ये जी जी बताएं।
2: और जो बुखार वगैरह की दवाई है, जैसे सर्दी खांसी की दवाई है, तो ये सब भी रखते हैं।
0: बिल्कुल योगेश जी, बाकी जब अचानक से तबीयत खराब होती है तो उस समय ये चीजें हमारे बहुत काम आती हैं, जब तक कि हम अस्पताल पहुंचे या डॉक्टर को दिखाएं उस दौरान हमारी सेहत के लिए। योगेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये बेहद एक रोचक सवाल होगा हमारे लिए भी, कि आप आपके घर में ये चीजें ऐसे कौन से स्थान पे रखते हैं जहाँ ये आपको सबसे जल्दी मिल जाती है?
2: देखिए भैया, उनके लिए तो एक जगह विशेष रख दिए हैं
0: जी,
2: और कोई भी ऐसी विकट स्थिति में खोजना नहीं पड़ता हमको।
0: जी योगेश जी, ये वाकई बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तब हमें कई बार समझ में नहीं आता है कि हम कोई चीज कहाँ ढूंढे, जब सभी चीजें एक जगह हो और घर के सभी लोगों को पता हो तो वो काफी मददगार होता है।
2: जी
0: योगेश जी, इसी के साथ हम आपसे एक और बहुत ही रोचक जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड में दवाइयाँ होती हैं और टेबलेट्स होती हैं, लोशन होते हैं, पर क्या आपको लगता है कि जो टॉर्च होती है, एक साधारण जो बिजली से चलने वाली टॉर्च होती है, क्या वो फर्स्ट एड के रूप में अपनाई जा सकती है?
2: बिल्कुल अपनाया जा सकता है भैया, लेकिन आजकल जो हमारा मोबाइल है,
0: जी योगेश जी,
2: मैं तो ऐसा मानता हूँ भैया, इससे बड़ा फर्स्ट एड हो ही नहीं सकता।
0: वाकई बिल्कुल सही कहा आपने,
2: क्योंकि हम

0: किस जगह पर रहे
1: जी,
0: मान लो हम कहीं गिर गए या कहीं कुछ हो गया तो मोबाइल में तो भी हम तत्काल फोन कर सकते हैं।
2: बिल्कुल योगेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मोबाइल में हमारे सारे कॉन्टेक्ट सेव होते हैं और सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, हम मदद के लिए तुरंत पुकार लगा सकते हैं।
0: टॉर्च का भी काम करता है, कॉन्टेक्ट का भी काम करता है, किसी भी विषम परिस्थिति में सबसे बड़ा साथी है।
2: बिल्कुल आपने सही कहा। और आज की जो युवा जनरेशन है, जो हमारे सभी श्रोता सुनने वाले हैं, उनके लिए आप इस पूरी टॉपिक पर, इस पूरी फर्स्ट एड वाली चीज पर क्या कहना चाहेंगे? उन्हें इस फर्स्ट एड वाली चीज को कितनी गंभीरता से लेनी चाहिए?
0: गंभीरता से लेना चाहिए भैया, हम तो बाइक में भी जो पट्टी वगैरह हो गया, जो दवाई वगैरह हो गया लगाने का, क्योंकि कब किसकी आवश्यकता पड़ जाए भैया, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता।
2: बिल्कुल आपने बहुत सही बात की योगी जी, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: मान्य, खेल का जो मैदान होता है उसमें दौड़ते समय अक्सर जो टखने हैं वो मुड़ जाते हैं, खिंचाव या मोच आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। ऐसी चोटों पर तुरंत मालिश करने के बजाय राइस यानी कि आर से रेस्ट आराम, आई फॉर आइस यानी कि बर्फ की सिकाई, सी से हम कहेंगे कंप्रेशन यानी कि हल्का सा दबाव, और ई से होगा एलिवेशन यानी कि अंग को थोड़ा सा ऊपर रखने का नियम अपना सकते हैं।
3: सच में आशुतोष, यह तरीका अंदरूनी सूजन और दर्द को बहुत तेजी से नियंत्रित करता है। किसी भी युवा खिलाड़ी को मैदान पर वापस विजयी होकर लौटने का भरोसा आपके द्वारा दिए गए इसी प्राथमिक संबल से शुरू होता है। श्रोताओं
2: बिल्कुल सही कहा मान्या। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: चलिए श्रोताओं, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: जी, एक बार फिर अपना नाम बताएं।
2: डॉक्टर सितारे हूँ, बिहार के वैशाली जिले से बोल रहा हूँ।
0: डॉक्टर सितारे नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका स्वागत है। आज हम प्राथमिक उपचार के बारे में यानी कि फर्स्ट एड के बारे में बातचीत करने वाले हैं।
2: जी, देखा हूँ फेसबुक पर अभी।
0: जी, तो आपके फर्स्ट एड के बारे में क्या विचार है शिकारी जी?

0: यार ये पूछना चाहता कि कोई आदमी एक्सीडेंट कर गया और बेहोश हो गया, उसके नाक से खून गिर रहा है,
1: जी जी,
0: तो क्या किया जाए? फर्स्ट एड क्या किया जाए?
1: जी, अक्सर जब हमें नक्सली होती है, जैसे हम नाक से खून बहना कहते हैं, अक्सर गर्मी के मौसम में एकदम डिहाइड्रेशन हो जाता है या फिर शरीर में बहुत थकान हो जाती है, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारे नाक से खून निकल रहा है। तो ऐसे में अलग अलग घर के घरेलू नुस्खे हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक बहुत बेसिक नुस्खा जो रहता है वो आपका रहता है कि जिसको भी नाक से खून बह रहा है शिकारी जी, आपको उसका जो हेड रहता है, उसकी जो गर्दन रहती है, वो ऊपर की तरफ कर देनी चाहिए, ताकि नाक का खून एकदम से ज्यादा फ्लो में ना आए और थोड़ा सा अंदर ही अंदर की तरफ उसका फ्लो बढ़ जाए। और फिर उसके अलावा जैसे चीजें होती है कि प्याज सुंघाना हो गया, या फिर कई लोग ये भी अपनाते हैं कि आपने चौक गीली करके सुंघा दी या फिर नाक में डाल दी, तो ये चीजें बहुत हेल्पफुल रहती है जब किसी को भी नक्सली चढ़ जाती है। तो उसके अनुसार
0: इतना सुंदर सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ,
1: और
0: भगवान हम लोगों को निरोग रखे।
1: जी शिकारी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। उम्मीद करते हैं कि आप आकाशवाणी उज्जैन के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे।
0: धन्यवाद।
2: आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मान्या, आज तो हमारे स्टूडियो के टेलीफोन की घंटियां लगातार बजती रहीं। एक पल के लिए भी फोन थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और सच कहूं तो हमारे श्रोताओं ने जिस संजीदगी से अपने अनुभव साझा किए, इसने मन खुश कर दिया।
1: सही कहा आशुतोष, कई बार लोग सोचते हैं कि प्राथमिक उपचार कोई बहुत जटिल डॉक्टरी का काम है, जबकि ये महज सामान्य समझ और सही समय पर सही कदम उठाने की बात है। चाहे घर में खौलता पानी गिरना हो, सीढ़ियों से फिसलना हो, खेल के मैदान में चोट लग जाना हो, घबराहट छोड़कर सूझबूझ दिखाना ही जीवन बचाता है।
0: बिल्कुल सही कहा मान्या। गोल्डन और यानी कि संकट के उस पहले घंटे में उठाया गया एक सही कदम किसी का पूरा जीवन बचा सकता है। उम्मीद है कल विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पर हमारे सभी युवा साथी अपने घरों, हॉस्टल्स और गाड़ियों में अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट जरूर दुरुस्त करेंगे
1: और प्राथमिक उपचार के ये बुनियादी नुस्खे अपने दोस्तों और परिवार को भी सिखाएंगे। लेकिन अब हमारे स्टूडियो की घड़ी की टिक टिक हमें याद दिला रही है श्रोताओं की आज के इस उपयोगी सफर को हमें यहीं विराम देना होगा।
0: बिल्कुल सही कहा मान्या। जब बातें इतनी काम की और अपनेपन से भरी हों तो वक्त का पता ही नहीं चलता।
1: हम अपने उन सभी प्यारे श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लगातार फोन मिलाकर अपनी कहानियां साझा करी, और उन सभी श्रोताओं का भी जो पूरे समय रेडियो से जुड़े रहे।
0: तो दोस्तों, सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी उज्जैन और हमारा यह मंच युवाणी, जो कि फिर लौटेगा कुछ और नई जानकारियों, प्रेरक बातों और सदाबहार गीतों के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता की खूब सारी सेवा कीजिए। आपके साथ हम थे आपके रेडियो मित्र आशुतोष
1: और मैं मान्या। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी उज्जैन के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूं सभी श्रोताओं का कार्यक्रम भजन संध्या में। शुक्रवार की है संध्या और माँ के पावन चरणों के स्मरण का अवसर। मन को भीतर तक छू लेने वाला यह समय है। दिन भर की व्यस्तता के बाद आइए कुछ पल अपने मन को माँ के चरणों में समर्पित करें। माँ का स्मरण केवल किसी मनोकामना के लिए नहीं, बल्कि उस शक्ति के प्रति कृतज्ञता है जो हर परिस्थिति में हमें संभालती है। भारतीय परंपरा में नारी शक्ति को सृजन, करुणा, साहस और संरक्षण के रूप में देखा गया है। इसी शक्ति का दिव्य स्वरूप हमें माँ के विभिन्न रूपों में भी दिखाई देता है। तो आज की यह संध्या शब्दों से अधिक भावों की होगी और प्रार्थना से अधिक आत्मीय संवाद की। आइए माँ के चरणों में अपने भाव समर्पित करते हुए आरंभ करते हैं आज की भजन संध्या।

श्रोताओं, माँ को याद करना अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना है। जब मनुष्य स्वयं को कमज़ोर समझने लगता है, तब विश्वास की एक छोटी सी किरण भी उसे आगे बढ़ने का साहस देती है। माँ के स्वरूप में हमें यही आश्वासन मिलता है कि कठिन रास्तों पर भी हम अकेले नहीं हैं। देवी के हाथों में शस्त्र केवल युद्ध का प्रतीक नहीं, बल्कि अन्याय और भय के सामने खड़े होने का संदेश भी है। उनका करुणामय स्वरूप हमें बताता है कि शक्ति के साथ संवेदना भी आवश्यक है। आज आप जहाँ भी हों, कुछ क्षण अपने मन की बेचैनी को विराम दीजिए। जो बात किसी से नहीं कह पाए हैं, उसे माँ के सामने मन ही मन रख दीजिए। प्रार्थना में शब्द कम पड़ जाएं तो कोई बात नहीं, सच्चा भाव ही पर्याप्त है। इसी श्रद्धा के साथ आइए माँ के चरणों में समर्पित भक्तिमय भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, हम अक्सर ईश्वर से मांगते बहुत हैं लेकिन धन्यवाद देना भूल जाते हैं। आज शुक्रवार की संध्या को माँ के सामने अपनी पहली प्रार्थना कृतज्ञता की भावना में रखें। सुबह मिली नई शुरुआत के लिए धन्यवाद करें, अपने परिवार के लिए धन्यवाद और उन छोटे छोटे सुखों के लिए भी धन्यवाद जिन्हें हम रोज़मर्रा में देख ही नहीं पाते। कभी किसी अपने की मुस्कान के लिए, कभी किसी अनजान व्यक्ति की सहायता और कभी बिना कारण मिली मन की शांति, ये सभी तो जीवन के उपहार हैं। माँ का स्मरण हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी मिला है उसे पहचानना भी एक साधना है। श्रोताओं, आज मन में किसी एक ऐसी बात को याद कीजिए जिसके लिए आप सचमुच आभारी हैं, फिर उसी भावना को माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। कृतज्ञ हृदय में शिकायतों का भार धीरे धीरे हल्का होने लगता है। और अब इसी शांत भाव के साथ संगीत अनुभव करते हैं और माँ की भक्ति से सजे अगले भजन सुनते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में देवी को एक ही स्वरूप में सीमित नहीं किया गया। कहीं वह दुर्गा है, कहीं लक्ष्मी, कहीं सरस्वती और कहीं अन्नपूर्णा। कहीं वे ज्ञान का प्रकाश देती हैं, कहीं समृद्धि का भाव और कहीं अन्न के माध्यम से जीवन का आधार बनती हैं। इन अलग अलग रूपों में एक ही चेतना दिखाई देती है, सृजन और संरक्षण की। यही कारण है कि माँ की आराधना केवल मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं रहती। जब कोई माँ अपने बच्चे को संस्कार देती है, जब कोई स्त्री परिवार को संभालते हुए अपने सपनों को जीवित रखती है, तब भी उसी शक्ति की झलक दिखाई देती है। तो आज माँ के स्मरण में हम अपने जीवन की उन सभी मातृशक्तियों को भी नमन करें जिन्होंने हमें कुछ दिया, सिखाया या संभाला है। श्रोताओं, इस भाव को अपने भीतर रखिए। आइए सुनते हैं माँ को समर्पित एक और मधुर भजन।

कहिए कि रास्ता कठिन हो तो भी उसे पार करने का साहस दीजिए, क्योंकि परिस्थितियां हमारे हाथ में हमेशा नहीं होती, लेकिन उनका सामना करने का भाव हम चुन सकते हैं। यही विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। इसी धैर्य और आस्था के साथ आइए श्रोताओं सुनते हैं माँ के चरणों में समर्पित अगला भजन।

श्रोताओं, इस बार प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए करें जो जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। माँ सबके घर में शांति रखे, हर परिवार में प्रेम और परस्पर सम्मान बना रहे, जिनके मन में चिंता है उन्हें संतुलन मिले, और जो थका है उसे नई ऊर्जा, और जो निराश है उसके भीतर आशा का नया दीप जले। हमारे विचारों में पवित्रता, वाणी में मधुरता और कर्मों में सद्भाव बना रहे। श्रोताओं, यही माँ की आराधना का सुंदर अर्थ भी है, अपने भीतर अच्छाई को बढ़ाना और उसे संसार तक पहुँचाना। इसी मंगल कामना के साथ आज भजन संध्या का अंतिम भजन सुनते हैं।

श्रोताओं, शुक्रवार की यह भक्तिमय संध्या अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज हमने माँ को केवल एक देवी रूप में नहीं, बल्कि शक्ति, करुणा, धैर्य और सृजन की उस चेतना के रूप में याद किया जो हमारे जीवन को दिशा देती है। अब जब आप अपने दैनिक जीवन में लौटें तो आज की यह शांति अपने साथ लेकर जाएं। माँ का स्मरण केवल मंदिर में नहीं, अपने व्यवहार में भी दिखाई दे, यही हमारी सबसे सुंदर प्रार्थना हो सकती है। आपकी रेडियो साथी दृष्टि को दीजिए अनुमति। आप सुनते रहिए FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी उज्जैन।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 6:30 हो चुके हैं। फिल्म संगीत के सुमधुर सफ़र में मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूँ सभी श्रोताओं का। सितंबर की यह सुहानी शाम और आज हम बात करेंगे उस संगीतकार की जिसके गीत या संगीत कहें कभी महाराष्ट्र की मिट्टी की खुशबू सुनाई देती है, कभी ढोल ताशों की गूंज, कभी लोक धुनों की सादगी और कभी सैकड़ों वाद्यों से बना हुआ एक विराट संगीत संसार। नाम है अतुल गोगावले। 11 सितंबर 1974 को जन्मे अतुल गोगावले आज अपना जन्मदिन मनाने वाले उन कलाकारों में हैं जिन्होंने यह साबित किया है कि संगीत की यात्रा शुरू करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके घर में संगीत का माहौल हो, ज़रूरी तो बस संगीत के लिए जुनून है। और अतुल की कहानी अकेले अतुल की कहानी नहीं, यह कहानी है दो भाइयों की, अजय और अतुल। आज की शाम सुनेंगे उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पड़ाव जहाँ संघर्ष था, प्रयोग था, असफलता थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा था संगीत के प्रति विश्वास।

श्रोताओं, अतुल गोगावले का जन्म 11 सितंबर 1974 को हुआ। वे अपने छोटे भाई अजय के साथ महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में पले बढ़े। उनके पिता की नौकरी के स्थानांतरण के कारण परिवार को कई स्थानों पर रहना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बचपन में अजय और अतुल की पढ़ाई में कोई बहुत खास रुचि नहीं थी, लेकिन संगीत उन्हें लगातार अपनी ओर खींचता रहा। स्कूल के दिनों में दोनों भाई संगीत के साथ प्रयोग करने लगे। एक बार एनसीसी प्रतियोगिता में अजय ने पहले से मौजूद धुन को अपने अंदाज में प्रस्तुत किया और उनके प्रयोग को पुरस्कार भी मिला। यहीं से शायद दोनों भाइयों को पहली बार महसूस हुआ कि संगीत केवल सुनने की चीज़ नहीं, सृजन करने की भी दुनिया है। उनका परिवार पारंपरिक अर्थों में संगीत परिवार नहीं था और उस समय महंगे वाद्य यंत्र खरीदना भी आसान नहीं था, इसलिए दोनों ने स्कूल, मंदिरों और स्थानीय बैंडों के साथ उनके माध्यम से संगीत सीखना शुरू किया। वे ऐसे लोगों से दोस्ती करते जिनके पास हारमोनियम, मृदंग, ढोल जैसे वाद्य यंत्र होते और उन्हीं के माध्यम से सीखते और प्रयोग करते। बाद में कॉलेज के समय दोनों स्थानीय बैंडों के साथ अरेंजर के रूप में भी काम करने लगे। और फिर आया वह यादगार पल जब उनके पिता ने उन्हें कीबोर्ड दिलाया। यही कीबोर्ड उनके जीवन का सबसे खास खिलौना बना। श्रोताओं, औपचारिक संगीत शिक्षा से ज़्यादा उन्होंने अनुभव, प्रयोग और जुनून से संगीत सीखा।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म धड़क से। गायक अजय गोगावले के बोल और गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत अजय अतुल का।

श्रोताओं, किसी भी कलाकार की सफलता के पीछे अक्सर वह दौर छिपा होता है जब मंच छोटा होता है और साधन सीमित होते हैं, लेकिन सपने बहुत बड़े। अजय और अतुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्थानीय बैंड, छोटे कार्यक्रम, नाटक और अलग अलग तरह के संगीत प्रयोग, यही उनकी शुरुआती प्रयोगशाला बने। उन्होंने संगीत को केवल फिल्मी धुनों तक सीमित नहीं रखा। लोक संगीत, पारंपरिक वाद्य, शास्त्रीय प्रभाव और आधुनिक ध्वनि, इन सब को मिलाकर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। और इस पूरी यात्रा में दोनों भाई एक दूसरे के संगीत के साथी बने रहे। एक की कल्पना में धुन आती तो दूसरा उसे नए रंग में ढालता। उनकी शुरुआती महत्वपूर्ण पहलों में विश्व विनायक जैसी भक्तिमय संगीत प्रोजेक्ट रहे, जिसमें पारंपरिक गणपति मंत्रों को सिम्फोनिक संगीत के साथ जोड़ा गया। यानी शुरुआत से ही उनका संगीत केवल एक शैली में बंधा हुआ नहीं था। वे भारतीय परंपरा को आधुनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलाने से नहीं डरते थे, और शायद यही प्रयोगशीलता आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। श्रोताओं, कभी कभी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रयोग से होकर गुजरता है, और अजय अतुल की कहानी इसका खूबसूरत उदाहरण है।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म अग्निपथ से। गायक सोनू निगम की आवाज़, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत अजय अतुल का। श्रोताओं, अजय अतुल की यात्रा में मराठी रंगमंच और मराठी सिनेमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। कई नाटक के लिए संगीत निर्देशन उन्हें शुरुआती पुरस्कार तो दिला गया, लेकिन इसके बाद सांवरखेड़े गांव, अगाबाई अर्चे और जबरदस्त जैसी फिल्में और अन्य कई परियोजनाओं ने उनकी पहचान को मजबूत किया। लेकिन 2008 में आई फिल्म जोगवा का संगीत उनके करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव बना। इस फिल्म के संगीत के लिए अजय अतुल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का सम्मान मिला। श्रोताओं, जिस जोड़ी ने कभी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वाद्य यंत्रों से सीखना शुरू किया था, वही जोड़ी अब देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में अपना नाम दर्ज करा रही थी। इसके बाद 2010 में नटरंग आया और संगीत को एक अलग ही प्रभाव पैदा किया। अप्सरा आली और खेल मंडला जैसे गीतों ने महाराष्ट्र के लोक संगीत और रंगमंची ऊर्जा को लोकप्रिय संगीत के बड़े मंच तक पहुंचाया। यहीं से अजय अतुल की पहचान सिर्फ संगीतकारों की नहीं, बल्कि भारतीय लोक धुनों को भव्य फिल्मी संगीत में बदलने वाले संगीतकारों की पहचान में बनने लगी।

श्रोताओं, उस दौर में जब अजय अतुल की धुनों ने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाना शुरू की, फिल्म सिंघम से लेकर अग्निपथ, बोल बच्चन, पीके ब्रदर्स, धड़क, तुम्बाड़ और जीरो तक उनकी संगीत यात्रा लगातार चलती रही। लेकिन वर्ष 2012 की फिल्म अग्निपथ ने उनकी लोकप्रियता को एक नया आयाम दिया और इसी फिल्म के लिए उनके बैकग्राउंड स्कोर को जी सिने अवार्ड सहित सम्मानित किया गया। लेकिन अजय अतुल की असली खूबी केवल बड़े और तेज़ गति के गीत बनाना नहीं था, वे दूसरी तरफ कई भावपूर्ण धुनें भी दे रहे थे। फिर आया वर्ष 2016 का मराठी सिनेमा का ऐतिहासिक संगीत, फिल्म थी सायराट। सायराट का संगीत इतना लोकप्रिय हुआ कि उनकी धुनें भाषा की सीमाएं पार कर गई और बाद में इसी संगीत

की लोकप्रियता हिंदी दर्शकों तक फिल्म धड़क के माध्यम से पहुंची। उनकी शैली में आपको ढोल, ताशे, लोकवाद्य, कोरस और बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ साथ आधुनिक स्टूडियो तकनीक का शानदार मेल दिखाई देता है, और यही कारण है कि अजय अतुल का संगीत सुनते समय अक्सर लगता है कि गीत केवल बज नहीं रहे हैं, पूरा वातावरण हमारे सामने जीवंत हो रहा है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी संगीत पहचान है।

श्रोताओं, अजय अतुल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा कई महाराष्ट्र राज्य और फिल्म संगीत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 4 फिल्मफेयर मराठी पुरस्कार, 3 महाराष्ट्र राज्य फिल्मफेयर पुरस्कार, 12 मिर्ची म्यूजिक अवार्ड और 2 जी सिने अवार्ड पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 2008 की जोगवा ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान दिलाई और 2013 में फिल्म अग्निपथ के लिए उन्हें बैकग्राउंड स्कोर को जी सिने अवार्ड मिला। फिर वर्ष 2015 में अजय अतुल ने फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में प्रवेश किया और 82वें स्थान पर रहे। 2019 तक उनकी स्थिति सूची में 22वें स्थान तक पहुंची और 2021 में फिल्म अग्निपथ के संगीत के लिए उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में कंपोजर ऑफ द डेकेड का सम्मान भी मिला। यानी छोटे शहरों और स्थानीय बैंडों से शुरुआत हुई यात्रा राष्ट्रीय पुरस्कार, लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान तक पहुंची। लेकिन शायद अजय अतुल की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पुरस्कार नहीं, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने भारतीय लोक और पारंपरिक संगीत को आधुनिक फिल्मी ध्वनि के साथ इस तरह जोड़ा कि वह आज की पीढ़ी को भी उतना ही अपना लगता है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अजय अतुल का सबसे लोकप्रिय गीत।

श्रोताओं, अजय अतुल की जोड़ी ने हमें बताया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। अतुल गोगावले को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और उनके संगीत के सफर को हमारा सलाम। मैं हूं आपकी रेडियो साथी दृष्टि और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से फिल्म संगीत। कल फिर मिलेंगे किसी नए गीत, किसी नए कलाकार की कहानी के साथ। FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार। श्रोताओं, शाम के 7 बजने को हैं और कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। उन्होंने

0: मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्केल फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच वार्ता हो रही है। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2-3 दिन तक बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 7:05 हो चुके हैं। श्रोताओं, आइए आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। शाम 7:21 पर सुनिए अपनी बोली मालवी में कार्यक्रम माटेरी बात। रात 8 बजे भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर सुनिए आकाशवाणी उज्जैन से फिल्म संगीत। रात 8:45 पर दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार संध्या। रात 9 बजे आप सुन सकेंगे News@9। रात 9:15 पर सुनिए उर्दू समाचार। रात 9:30 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए छाया गीत। रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10:30 पर सुनिए कार्यक्रम ढलती जाए रात। और रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे। रात 11:10 से सुनिए FM गोल्ड के कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए आपको कल दिनांक 12 सितंबर सन 2026 शनिवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह ठीक 5:50 पर प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। प्रातः 6:00 दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे। सुबह 6:05 पर विविध भारतीय मुंबई से सुनिएगा कार्यक्रम वंदनवार। सुबह 6:35 पर आप सुन सकेंगे रामचरितमानस गान और ठीक 6:45 पर सुनिए कार्यक्रम संगीत सरिता। प्रातः 7:00 आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए भक्तिमय कार्यक्रम महाकाल वंदन। सुबह 7:20 पर सुनिए आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से अनुप्रसारित प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। ठीक 8:00 सुनिए दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात और 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। सुबह 9:30 पर सुनिए नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। सुबह 10:00 आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कल दिन में 11:00 विविध भारतीय मुंबई से सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग। दोपहर 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। दोपहर 2:00 सुनिए भोपाल से अनुप्रसारित फिल्म संगीत। दोपहर 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। दोपहर 3:30 पर विविध भारतीय मुंबई से सुनिए कार्यक्रम नाट्य तरंग। दोपहर 4:00 सुनिए बॉम्बे टॉकीज। कल संध्याकालीन सभा में शाम 5:00 आकाशवाणी उज्जैन से सुनिए कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:00 सुनिए भक्तिमय कार्यक्रम भजन संध्या। शाम 6:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल। शाम 7:00 दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे। कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी उज्जैन से सुनिए कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। रात 8:00 सुनिए फिल्म संगीत। रात 8:45 पर दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार संध्या। रात 9:00 कार्यक्रम न्यूज़ एट 9 और रात 9:15 पर आप सुन सकेंगे उर्दू समाचार। रात 9:30 पर संस्कृत भारती और रात 10:00 सुनिए कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। और रात 11:00 दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे। रात 11:10 से आप सुन सकेंगे FM गोल्ड के कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं और थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुँचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। 5-डे बैंकिंग की मांग को लेकर आज प्रदेश के 40,000 बैंक कर्मचारी रहे हड़ताल पर। और सतना, रीवा, शहडोल सहित 12 पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी। इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने श्री पुतिन को कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा रचित प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद भेंट किया। श्री मोदी और श्री पुतिन दोनों ने भारत मंडपम में स्थित इनोप्रोम प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित यात्री परिवहन विजन समिट में ऐलान किया कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के 75% गांवों तक आधुनिक और सुरक्षित बस सेवा पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है।
1: हमारे प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव से लगाकर ये जो एक महीने की सेवा संकल्प महीना जो हमने घोषित किया है, ऐसे में 25 तारीख को सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ राज्य के अंदर किया जाएगा यात्रियों की सुविधाओं के लिए।
0: वहीं फास्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए रेपिडो के साथ एमओयू किया गया है, जिसके तहत महिलाओं द्वारा संचालित रेपिडो पिंक बाइक टैक्सी सेवा को बढ़ावा मिलेगा। भोपाल और इंदौर में इसे पायलट प्रोजेक्ट रूप में शुरू किया जाएगा। लगभग 2 दशकों बाद शुरू हो रही यह राज्य बस सेवा पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सागर जिले की दुखद घटना और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अवैध शराब कारोबार के मुख्य आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नशे की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने शाहगढ़ के ग्राम सिमरिया उवरी में बंडा अवैध शराब मामले के आरोपी चंद्रभान राजपूत के कब्जे से 4.79 हेक्टेयर शासकीय भूमि मुक्त कराई है। वहीं NH 44 के किनारे अवैध रूप से विस्तारित सौरभ ढाबे को भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दिव्यांग बच्चों ने मिट्टी से बनाई भगवान श्री गणेश की सुंदर प्रतिमाएं भेंट की। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में बच्चों की प्रतिभा, मेहनत और सृजनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि इन पर्यावरण अनुकूल प्रतिमाओं के माध्यम से बच्चों ने प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का प्रेरक संदेश दिया है। उन्होंने गणेश चतुर्थी पर बच्चों द्वारा बनाई प्रतिमाएं खरीदकर उनका उत्साह बढ़ाने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप नगद राशि भी प्रदान की। ये प्रतिमाएं सीहोर स्थित वसुंधरा विशेष विद्यालय के बच्चों ने तैयार की हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 3,65,000 से अधिक ग्रामीण आवासों के स्वीकृति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शेष 18 लाख आवासों का निर्माण भी जल्द पूरा किया जाएगा।
2: धन्य विष्णुदेव, मुख्यमंत्री बनते ही पहला आदेश ये दिया कि सब गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। और जब विजय आए तो हमने कहा चिंता मत करो, 18 लाख जो शेष बचे हुए जो मकान है वो पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। और आज जब मैं आया हूं, 13 लाख मकान 2 साल में पहले दिए, आपने कहा 2 लाख और बना दिए, आपने 2 लाख बना दिए विष्णुदेव जी, तो 3,65,159 और ले लो, आज मैं स्वीकृति पत्र दे के जाऊंगा।
0: कार्यक्रम में पंचायत पदाधिकारी एवं लखपति दीदी सम्मेलन भी आयोजित हुआ। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री श्री साय और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण भी किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश में आज करीब 40,000 बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हुई हड़ताल से प्रदेश की करीब 7,000 बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित हुआ। नगद जमा निकासी, चेक क्लियरेंस, ऋण संबंधी कार्य और काउंटर सेवाएं प्रभावित रही। डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम सेवाएं सामान्य रही। हड़ताल के बाद कल दूसरा शनिवार और रविवार होने के कारण बैंक शाखाओं में नियमित कामकाज सोमवार से सामान्य होने की संभावना है। पांढुर्णा जिले में आज आयोजित गोटमार मेले के दौरान जाम नदी में झंडे पर कब्जे को लेकर पांढुर्णा और सावरगांव पक्ष के बीच सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार पत्थरबाजी हुई। इस दौरान करीब 1,000 से अधिक लोग घायल हुए। 5 घायलों को नागपुर रेफर किया गया। घायलों के उपचार के लिए 7 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र, 44 डॉक्टर और 22 एम्बुलेंस तैनात किए गए। सुरक्षा के लिए 700 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की गई। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तृतीय और अंतिम चरण की समय सारणी जारी कर दी है। ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन 13 सितंबर तक किए जा सकेंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 15 सितंबर तक होगा। मेरिट सूची 16 सितंबर को और सीट आवंटन 17 सितंबर को किया जाएगा। इसके बाद 17 से 19 सितंबर तक भौतिक सत्यापन और 17 से 20 सितंबर तक प्रवेश शुल्क जमा किया जा सकेगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में 3 दिन के विराम के बाद मॉनसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, शहडोल और बालाघाट समेत प्रदेश के 12 पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने नए लो प्रेशर एरिया से अगले 2 दिनों में इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में भी तूफानी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। प्रदेश में इस सीजन में अब तक 31.3 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है, जो सामान्य से 8% कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में वर्ष की 3री नेशनल लोक अदालत कल आयोजित होगी। अलीराजपुर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शिविर में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस श्रद्धापूर्ण वातावरण में मनाया गया। मुरैना में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत ग्राम खांडोली में शिविर आयोजित किया गया। खंडवा में कल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में देश की 40 प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंदसौर जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक माइक्रोबायोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया। और मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत मुख्य सचिव ने धार में कन्या आवासीय परिसर एवं मेडिकल कॉलेज निर्माण स्थल का किया निरीक्षण। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 7:21 होने को हैं। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूं सभी श्रोताओं का। समय हो चला है निमाड़ी लोकगीतों और मालवी बोली से सजे कार्यक्रम माटेरी बात का। आज प्रस्तुत करता है मुकेश मेहता।

सगला किसान भाइयों के राम राम। आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन रहे हो आपकी अपनी पसंद को कार्यक्रम माटेरी बात। मैं हूं आपको अपना रेडियो साथी मुकेश भैया। किसान भाई,

मैं आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा और आज को अपना कार्यक्रम को विषय है प्राकृतिक और जैविक खेती को विस्तार। पर सबसे पहला समय है अपना देश और दुनिया का हालचाल जानवा को, तो आओ अपनी प्यारी बोली मालवी में समाचार सुनिला।

सगला किसान बहन के राम राम। अब आप मुकेश मेहता से मालवी समाचार सुनो। सबसे पहला आज का खास समाचार। प्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होगा। सागर में जहरीली शराब मामला में मुख्य आरोपी के गिरफ्तार कर लियो है और बड़वानी जिला का प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल को निरीक्षण करियो। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को शुभारंभ होने जा रही है। इंदौर में आयोजित यात्री परिवहन विजन सबमिट 2026 में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान करियो कि साल 2030 तक प्रदेश का 75% गांव तक आधुनिक और सुरक्षित बस सेवा पहुंचाई जाएगा। फास्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी का वास्ते रेपिडो से एमओयू करियो है, जिसका तहत महिलाओं द्वारा संचालित रेपिडो पिंक बाइक टैक्सी सेवा के बढ़ावा मिलेगा। भोपाल और इंदौर में इके पायलट प्रोजेक्ट का रूप में शुरू करियो जाएगा। लगभग 2 दशक बाद शुरू हुई यह राज्य सेवा पूरा देश का वास्ते रोल मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कियो है कि सागर जिला की दुखद घटना और कानून व्यवस्था के लेके प्रशासन के कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। उनने आज मीडिया से बातचीत में बतायो कि अवैध शराब का कारोबार में लिप्त आरोपी उनका विरुद्ध अतिक्रमण हटावा सहित आवश्यक कार्रवाई की गई है। कोई भी दोषी के बख्शो नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने बतायो कि अवैध शराब कारोबार का मुख्य आरोपी के शार्ट एनकाउंटर का बाद गिरफ्तार कर लियो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिव्यांग बच्चा हुन ने मिट्टी से बनी हुई भगवान गणेश की सुंदर मूर्ति भेंट करी। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में बच्चा की प्रतिभा, मेहनत और सृजनशीलता की सराहना करता हुआ कियो कि इनकी पर्यावरण अनुकूल मूर्ति हुन का माध्यम से बच्चा हुन ने प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को प्रेरक संदेश दियो है। उनने गणेश चतुर्थी पे बच्चा हुन द्वारा बनाई गई मूर्ति खरीदी के उनके उत्साह बढ़ावा की अपील करी है। इन अवसर पे मुख्यमंत्री ने बच्चा हुन के नगद राशि भी दी है। ई मूर्ति सीहोर का वसुंधरा विशेष विद्यालय का बच्चा हुन ने तैयार करी है। 5 दिन को बैंकिंग सप्ताह लागू करवा समेत अलग अलग मांग के लेके प्रदेश में आज करीब 40,000 बैंक कर्मचारी हड़ताल पे रिया। यूनाइटेड फोरम आप बैंक यूनियन का आह्वान पे हुई हड़ताल से प्रदेश के करीब 60,000 बैंक शाखा उनको काम प्रभावित हुए। नगद जमा निकासी, चेक क्लियरेंस, ऋण संबंधित काम और काउंटर सेवा प्रभावित हुई। डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम सेवा सामान्य रही। हड़ताल का बाद कल दूसरा शनिवार और रविवार का हुआ का कारण बैंक शाखा उनको नियमित काम का सोमवार सहित सामान्य हुआ की संभावना है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का तहत मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने आज धार को दौरो करियो। उनने 267 करोड़ रुपया की लागत से 25 एकड़ में बनवा वाला नवा मेडिकल कॉलेज का निर्माण स्थल को जायजो लियो। निर्माण कार्य में सुस्ती पे नाराज होते हुए उनने अधिकारी उनके काम में तेजी लावा और समय सीमा में काम पूरा करवा का सख्त निर्देश दिया। इका पहला उनने कन्या आवासीय परिसर को निरीक्षण करी के छात्रा उनसे बात करी। इंदौर में आयोजित 70वीं राज्य शालेय शूटिंग प्रतियोगिता को समापन हुई गयो। इन्हीं प्रतियोगिता में प्रदेश का 9 संभाग से 375 से ज्यादा निशानेबाज हुन अपना का हुनर बतायो। मेजबान इंदौर संभाग ने अपनो दबदबो कायम रखते हुए 28 स्वर्ण, 9 रजत, 7 कांस्य पदक जीती के ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपना नाम करी। व्यक्तिगत वर्ग में अंडर 19 पिस्टल एयर में इंदौर का कविश और पीप साइड बालिका वर्ग में अश्विनी मुजालदे ने पहलो स्थान प्राप्त करियो। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का तहत बड़वानी जिला का प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने जिला अस्पताल को औचक निरीक्षण करियो। उनने ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक और आयुष्मान कक्ष को जायजो लेता हुआ मरीज और उनका परिवार जन से स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी ली। निरीक्षण का दौरान आयुष्मान योजना का तहत मरीज उनके मिलवा वाला निशुल्क इलाज पे संतोष जताता हुआ उनने अधिकारी उनके सिकल सेल से पीड़ित बच्चा उनके विशेष देखभाल और खान पान सुनिश्चित करवा को निर्देश दियो। प्रदेश में 3 दिन विराम का बाद मानसून ने

रफ्तार पकड़ी ली है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, शहडोल और बालाघाट समेत प्रदेश का 12 पूर्वी जिला में भारी बरसात को अलर्ट जारी करियो है। वहां आज बंगाल की खाड़ी में बनिया नवा लो प्रेशर एरिया से अगला दो दिन में इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में भी तूफानी बरसात का दौर शुरू होवा की संभावना है। तो ये था आज का समाचार।

किसान भाई, सबसे पहला अपन यो समझा के प्राकृतिक खेती कई है। सरल शब्द में बोला तो प्राकृतिक खेती में खेत की मिट्टी, पानी, जीव जंतु, जड़ पौधा और प्राकृतिक संसाधन का साथे संतुलन बनावा पे जोर दियो जावे है। इनमें स्थानीय संसाधन और प्राकृतिक प्रक्रिया को उपयोग सबसे महत्वपूर्ण मान्यो गयो है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य खाली फसल पैदा करना नहीं है, बल्कि मिट्टी के उपजाऊ बनाए रखना और खेती की प्राकृतिक प्रक्रिया के भी मजबूत करना है। अपना पूर्वज की परंपरागत खेती में भी प्रकृति का साथे तालमेल दिखतो थो। गाय को गोबर, गौमूत्र, खेत का जैविक अवशेष और स्थानीय संसाधन खेती का हिस्सा हुआ करता था। आज यो जरूरी हो गयो है कि अपन अपना पारंपरिक ज्ञान के आधुनिक कृषि विज्ञान के समझ के साथे जोड़ा। आओ कार्यक्रम का आगे बढ़ावा ने सुना एक प्यारो सो लोकगीत।

0: के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: nmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: किसान भाई, अब अपन बात करा जैविक खेती की। जैविक खेती में रासायनिक पदार्थ उनका प्रयोग पर निर्भरता कम करता हुआ जैविक खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक और जैविक कीट प्रबंधन जैसी विधि उनके अपनायो जावे है। पर यह एक बात समझना जरूरी है कि प्राकृतिक खेती ने जैविक खेती एक जैसी नहीं है। यह बात सही है कि दोनों का उद्देश्य प्राकृतिक प्रक्रिया और जैविक संसाधन उनके बढ़ावा देना है। जैविक खेती में निर्धारित जैविक मानक और प्रमाणन की प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, खास करके जब अपन अपना उत्पाद के प्रमाणित जैविक उत्पादन का रूप में बाजार में बेचना चाहवा। किसान भाई, अपना मालवा की धरती पे खेती का क्षेत्र में नवाचार की नवी संभावना लगातार सामने आ रही है। पारंपरिक फसल का बीच में अब युवा किसान फसल विविधीकरण की दिशा में नवा नवा प्रयोग कर रहा है। ये सोच एक अभिनव प्रयोग करियो है उज्जैन का युवा किसान ऋषभ पंड्या ने, जिनने बड़ा स्तर पे सूरजमुखी की खेती करी के किसान उनका सामने नवी संभावना दी है। आओ युवा किसान ऋषभ पंड्या से जाना कि तकनीक संभावना और किसान उनके हवा वाला फायदा का बारे में। तो प्रस्तुत है ऋषभ पंड्या से विशेष भेंट वार्ता।
3: सगला किसान भाई उनके राम राम। किसान भाई, भारत एक कृषि प्रधान देश है और समय का साथे साथे खेती को रूप भी बदली रही है। आज को किसान खाली परंपरागत खेती तक ही नहीं रही है, बल्कि नवी नवी फसल, नवी नवी तकनीक और नवा नवा प्रयोग का माध्यम से खेती के और ज्यादा फायदा वाली बनावा की दिशा में आगे बढ़ी रही है। अपना मालवा को क्षेत्र जो है उपजाऊ मिट्टी और कृषि विविधता का वास्ते जाने जाए है। यहाँ गेहूं, सोयाबीन, चना और अन्य नरी पारंपरिक फसल का साथ अब खेती में नवाचार की भी नई संभावना दिखाई देवा लगी है। ऐसोज एक रोचक और प्रेरणादायक प्रयोग करियो है अपना यहाँ का युवा किसान श्री ऋषभ पंड्या जी ने, जिनने मालवा क्षेत्र में सूरजमुखी, जिसे अंग्रेजी में सनफ्लावर कहा, की खेती के अपने के कृषि का क्षेत्र में एक नवी पहल करी है। सूरजमुखी खाली अपनी सुंदरता का वास्ते नहीं, बल्कि खाद्य तेल उत्पादन, पोषण और व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण फसल है। ऐसा समय में जब किसान फसल विविधीकरण और आय बढ़ावा का नवा विकल्प तलाशी रहा है, सूरजमुखी की खेती एक संभावनाशील विकल्प का रूप में सामने आ रही है। आज का इन विशेष साक्षात्कार में हम जानेंगा कि मालवा में सूरजमुखी की खेती को विचार कैसे आयो, इके किना प्रकार से तैयार की गई और खेती का दौरान कई अनुभव रिया और भविष्य में इन्हीं फसल की कई कई संभावना है। तो आओ बातचीत को सिलसिलो शुरू करा युवा किसान श्री ऋषभ पंड्या जी का साथे। पंड्या जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। पंड्या जी, आप हमारे यो बताओ कि आपने जो कृषि कार्य से जुड़ी जो यात्रा है वह कैसे शुरू करी और को कई अनुभव रही।
4: बेटा, कृषि में तो पूरा परिवार ही तो शुरू से हम लोग, मारो कॉलेज वो थो 2014 में, उसके बाद से मैं बचपन से कृषि जैसे देखता ही रहता, तो इंटरेस्ट तो ही सही भी में, तो उसके बाद हम भी खेत पे आने लग गया। हमने देखो कि यहाँ पे फसल वही होती थी गेहूं, चना, सोयाबीन, गेहूं, चना, सोयाबीन। तो हमने सोचो इसमें सोयाबीन में जैसे देखो आप पिछला 4-5 साल से तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ था और लागत बढ़ती जा रही थी, तो इसीलिए हमने सोचो कि अभी अपन कुछ नए में प्रयोग करा। तो हमने सूरजमुखी पहला भी लगाया था थोड़ो, अभी इस बार अच्छा बड़ा लेवल पे लगाया
3: जी। आपका मन में मालवा में सूरजमुखी की खेती करवा को विचार कैसे आयो और इसका पीछे कहीं प्रेरणा रही?
4: बेचार, सूरजमुखी की खेती कोई बहुत नई फसल नहीं है, या पहला भी होती थी आज से 20-25 साल पहला हमारे मालवा में होती थी और महाराष्ट्र बेल्ट में भी होती थी। अभी हम उत्तराखंड गया था यात्रा पे, तो वहाँ पे हमने देखो कि सूरजमुखी की खेती बहुत अच्छी हो, तो इसीलिए हमने वहाँ देखी, वहाँ किसान उनसे मिला, फिर हमने यहाँ पे भी वापस प्रयोग करी, तो यह अच्छी खेती है और 3 बार हम एक साल में ले सकते।
3: मालवा में परंपरागत रूप से सोयाबीन, गेहूं और चना जैसी प्रमुख फसल रहे, ऐसा में सूरजमुखी जैसी नई फसल को चुनवा को निर्णय कितनो चुनौतीपूर्ण था आपका लिए?
4: भाई साहब, थोड़ो सो तो थो, क्योंकि हमारे भी पहला बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, के एकदम सक्सेसफुल होएगा, क्योंकि नया प्रयोग कर रहा था, आसपास भी किसान उनको ही नहीं करता था। तो हमने पहला 10 एक बीघा पे एको प्रयोग करियो, हमने उत्तराखंड जी के किसानों से समझे वहाँ पे, उसका बाद हमने लगी तो फिर अच्छी हमारा रिजल्ट आया, तो इस बार हमने बड़ा लेवल पे एक कर लिया।
3: सूरजमुखी की बोने के लिए उपयुक्त तो टाइम का ही है, और किसान के बीज को चयन करते समय कौन कौन सी बात को ध्यान रखना चाहिए?
4: सूरजमुखी की खेती हम साल में 3 बार ले सकता हूँ, सोयाबीन का साथ भी हम एक ही रबी खरीफ दोनों में हम एक ही बोनी कर ही सकता है। बीज में आप देखो तो हमने उत्तराखंड से हमने बीज लियो तो जो कम पानी की वैरायटी वालों रहे, आप वो हाइब्रिड बीज लो तो ज्यादा अच्छे होते।
3: अच्छा, बिना फसल में खेत की तैयारी, बीज की मात्रा और पौधा का बीज में दूरी को कोई महत्व है?
4: इमें खेत की तैयारी तो हमारी जो हम सोयाबीन के लिए हकई जुताई करा वा करा, उसका बाद हम इमें बीज की मात्रा डले 1 से 1.5 क्विंटल बीघा की, और इमें जो हमारा सीड ड्रिल को गालोर हम उसमें 6 से 7 mm की दूरी रखी सकता है।
3: अच्छा, बहुत बढ़िया। सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन की दृष्टि से सूरजमुखी की खेती में किन बात को ध्यान रखना जरूरी है?
4: सिंचाई में भैया इसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहे, 2 या 3 पान में या बहुत अच्छी हो जाए, हम अगर इसमें बारिश का बात करें तो ड्रिप लगा ही सकता है।
3: कहीं इन्हीं फसल में कीट और रोग की समस्या भी सामने आई, और अगर आई है तो कैसे उसको प्रबंधन करें?
4: थोड़ी रहे इसमें खरपतवार की समस्या रहे, वह बहुत ज्यादा नहीं है, वह हम मैन्युअली भी कर ही सकता है और हम पेस्टिसाइड डाली खरपतवार नाशक भी डाली सकता है।
3: अगर अपन लागत और संभावित आय की बात करें तो सूरजमुखी की खेती किसानों का वास्ते कितनी फायदों वाली है?
4: या आप अगर सोयाबीन चना से मतलब हम सोयाबीन से कंपेयर अगर करांगा तो उससे ज्यादा लाभदायक, क्योंकि इसमें बस बोनी लगे बारिश का सीजन में अगर हम करा तो, उसके अलावा इसमें दवाई और खाद को खर्चो बिल्कुल भी नहीं।
3: कहीं सूरजमुखी की खेती मालवा का किसान उनका लिए विविधीकरण को एक अच्छा विकल्प बनी सकती है?
4: हाँ, हम एक वैकल्पिक सोयाबीन की जगह देख ही सकता है।
3: एक युवा किसान के रूप में आप कृषि में नवाचार और नवी तकनीक का माध्यम के किनी प्रकार से देखो?
4: भैया आप देखो आजकल जैसे समय बढ़ी रहे तो हमारे नई तकनीक तो लेनी चाहिए, उससे हमारा फायदा भी हो रहेगा कि हमारी जो कॉस्टिंग रहे वह भी कम जाए कहीं ना कहीं।
3: आज का युवा अक्सर खेती से दूर होता जा रहा है, तो आप युवाओं के आधुनिक नवाचार और आधारित खेती का बारे में कहीं संदेश देना चाहूंगा?
4: मैं तो बोलूँ भाई साहब कि हमारे हमारी पारंपरिक खेती से जुड़ना चाहिए, आज का समय में सब नौकरी का पीछे भाग रहे, या एक अलग अनुभव भी दे, आपका एक्सपीरियंस दे, जीवन जीने को एक तरीको भी सिखाए खेती, और हमारे खेती से जुड़ना चाहिए।
3: जो किसान मालवा में पहली बार सूरजमुखी की खेती करना चाह रहा है उनके आप कहीं व्यवहारिक सलाह देना चाहोगा?
4: मारो उनके यह सलाह रहेगा कि पहला आप छोटा लेवल पे एक स्टार्ट करो और आप जैविक खेती की तरफ इसमें जाओ।
3: जब आपने पहली बार सूरजमुखी की फसल बोई तो सूरजमुखी को फूल जब खिलियो तो आपको अनुभव कैसे रहा था?
4: हमारे बहुत अच्छा लगे था, देखने में भी फसल काफी सुंदर है, अगर देखो तो खेत में पूरा पीलोपन है, या खेत भी बहुत अच्छा दिखा, और यह जो फसल है इसका कारण हमारे यहाँ पे बर्ड जो बोले मतलब चिड़िया उन गोरैया वगैरह पशु पक्षी के लिए भी

0: बहुत अच्छी फसल है।
1: परिवार और आसपास का किसान उनकी नया प्रयोग पर कहीं प्रतिक्रिया?
0: सबने हमारा बहुत सराहो, सबने हमारा प्रेस कर रहे, मतलब सब लोग उनको बहुत अच्छा रिएक्शन था इस पर कि आगे बढ़ाने के लिए।
1: कहीं आपके शुरू में लोगों ने इस प्रयोग को देखी क्या, कहीं संशय आशंका भी व्यक्त करी होगी?
0: लोगों ने करी थी डीमोटिवेट कि बारिश का कारण फसल आपकी खराब होगा ये वो, पर हमने जैसे पहले एक्सपेरिमेंट करी हो तो इसको 5 बीघा में लगी क्या, तो हमारे सही थी और हम उसी नतीजा पे हमने इस बार इस पर ज्यादा बड़ी उस पर करी है स्केल पर।
1: आपका अनुसार एक सफल किसान बनवा वास्ते कई अनुभव जरूरी है या नई चीज सीखने की इच्छा?
0: वैसा अनुभव तो बहुत जरूरी है खेती को, हमारे बड़ा उनको भी हमारा मार्गदर्शन मिले और नई टेक्निक हमारे लेनी चाहिए। आजकल इना युग में हम ऑनलाइन और सब दूर जा ही सकता है, कृषि विभाग से भी जानकारी ले सकता है, तो दोनों चीज को जो सामर्थ्य है उससे हम बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं।
1: कई कृषि वैज्ञानिक हूँ या कृषि विभाग से भी आपके कोई तकनीकी मार्गदर्शन मिलियो या आपने कोई प्रयास करियो?
0: बिल्कुल, कृषि विभाग से हमारा यहाँ पे आया था कृषि विभाग का जो वैज्ञानिक है, उन्होंने हमारे और इसमें हम इसको कैसे बढ़ा ही सकता हूँ, प्रोडक्शन ज्यादा कर सकता हूँ, उसको मार्गदर्शन दिया था।
1: तो एक युवा किसान होने का नाते आप हमारा मालवा का किसान भाई उनके कोई संदेश देना चाहो?
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम पारंपरिक खेती तो जैसे करा उससे हटी के हम थोड़ी नई फसलें लगाएं। अभी हम R&D जी के कैस्टर बोले इंग्लिश में, हम उस पर भी सर्च करें, वह भी सोयाबीन की जगह एक विकल्प कर ही सकता हूँ। तो सोयाबीन की जगह हम बेसिकली जो सोयाबीन को विकल्प ढूंढी रहा था, तो सनफ्लावर और R&D दो चीज बहुत अच्छी कामयाब है।
1: आपने जैसे बात करी सोयाबीन का विकल्प का रूप में सूरजमुखी की फसल, तो व्यापारी वर्ग भी आपसे संपर्क में होगा और इसको विपणन कैसे कहीं?
0: बिल्कुल, व्यापारी वर्ग भी संपर्क में आए हो, बहुत सारे लोग हमारा खेत पे भी आया है। आजकल जैसे आप देखा कच्ची घानी बहुत चली हुई है और सोयाबीन इसको सनफ्लावर ऑयल को जो बीज रहे हो कच्ची घानी एक और तेल भी निकले, सोयाबीन ऑयल का कंपेरिजन में ज्यादा अच्छा है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम रहे, इसका लोग बीज भी खाए हैं, रोस्टेड बीज भी आजकल बाजार में चले, तो व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छी चीज है।
1: नवाचार की दृष्टि से आपने सूरजमुखी और केस्टर की जो बात करी अरंडी का तेल की, उसका अलावा और कोई आपने नवाचार प्रयोग अपना खेत में करियो हो, रुको कहीं आपको अनुभव रही हो?
0: उसका अलावा हमने पहला अश्वगंधा भी लगी थी जो एक औषधीय फसल है, पर उसमें हमने देखियो कि हमारी जो काली मिट्टी है यहाँ पे उसमें उसको थोड़ा सो प्रोडक्शन कम रहे, तो भुरभुरी मिट्टी में वो ज्यादा सक्सेसफुल है। बाकी हमारे जो मालवा की काली मिट्टी है गहरी, उसमें हम R&D बहुत अच्छी कर ही सकता है और सूरजमुखी।
1: तो किसान भाई, युवा किसान हमारा ऋषभ पांड्या जी ने मालवा में सूरजमुखी की खेती का प्रयोग करी के जो संदेश दियो है कि यदि किसान वैज्ञानिक सोच, सही जानकारी और साहस का साथ नई फसल की ओर कदम बढ़ाए तो कृषि का क्षेत्र में नया अवसर उनका द्वार खुली सकता है। फसल विविधीकरण खाली किसान की आय का नया स्रोत ही विकसित कर सके है, बल्कि बदलता हुआ मौसम और बाजार की परिस्थिति का बीच खेती के और अधिक मजबूत और टिकाऊ भी बने सकते हो। हमारे उम्मीद है कि ऋषभ पांड्या को यह प्रयास मालवा सहित अपना अन्य क्षेत्र में किसान उनके विशेष रूप से युवा पीढ़ी के और खेती में नया प्रयोग करने की प्रेरणा देगा। ऋषभ पांड्या जी, आपने अनुभव और महत्वपूर्ण जानकारी हमारा किसान भाई उनका साथ साझा करी, इकाली आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: किसान भाई, मिट्टी है तो खेती है और खेती है तो किसान है। अपनी मिट्टी खाली धूलो नहीं है, इकंदर असंख्य छोटा छोटा जीव रहे। ये जीव जैविक पदार्थ को विघटन और पोषक तत्व का चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। इका वास्ते अपने खेती की सेहत को ध्यान रखना सबसे जरूरी है। फसल काटवा का बाद उनका खापा उनके पूरी तरह से जले देवा की जगह उनको उचित प्रबंधन कर सकता है। कंपोस्ट और दूसरा जैविक पदार्थ को उपयोग मिट्टी में जैविक कार्बन और संरचना सुधारवा में मदद करे हुए। मृदा परीक्षण का आधार पे पोषक तत्व की जरूरत के संबंध में भी बहुत जरूरी है। किसान भाई, प्राकृतिक और जैविक खेती की चर्चा में एक सवाल मन में जरूर आवे है कि इसे अपनी आय कैसे बढ़ेगा।
4: तो किसान भाई कोई भी खेती की

टीके अपनाव से पहला अपनी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार लागत और उत्पादन को हिसाब किताब करना जरूरी है। प्राकृतिक या जैविक खेती अपनावा में अपने एकदम सगली व्यवस्था बदलवा की जगह धीरे धीरे योजना बने के बदलना चाहिए। किसान भाई, बात के आगे बढ़ावा से पहला अपन एक प्यारो सो लोकगीत सुनीला।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: किसान भाई, अपना खेत का वास्ते जैविक खाद बहुत उपयोगी साधन हो सके है। गोबर के अच्छे तरह से तैयार करी हुई कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, फसल अवशेष से बनी खाद और हरी खाद जैसा विकल्प खेत में जैविक पदार्थ के बढ़ावा में मदद करे है। पर एक बात याद रख, जो कच्चा जैविक पदार्थ ने अच्छी तरह से तैयार खाद में बहुत अंतर है। खाद के सही तरह से तैयार होना, उसको उपयोग, मात्र

इन्हीं सगड़ी बात को ध्यान रखना चाहिए। कृषि विशेषज्ञ की सलाह और कृषि विभाग की जानकारी का हिसाब से कोई भी जैविक पदार्थ को उपयोग करना उचित रहेगा। किसान भाई, अब बात करा कीट प्रबंधन की, तो अपना खेत का सगला कीट दुश्मन नहीं रहे। नरा कीट तो ऐसा रहे जो अपनी फसल का वास्ते फायदा वाला रहे और नुकसान करवा वाला कीट उनके नियंत्रित करवा में भी अपनी मदद करे। इका वास्ते समय कीट प्रबंधन जैसी वैज्ञानिक पद्धति के अपनाना उपयोगी हो सकता है। अपने फसल की नियमित देखभाल करनी चाहिए, कीट की पहचान करो, अपनी आर्थिक क्षति का स्तर पर समझना चाहिए, अपना खेत में उपयोगी कीट की उपस्थिति को ध्यान रखने, फिर जरूरी हुआ पे कृषि विशेषज्ञ की मदद से जरूरी उपाय करना चाहिए। मतलब पहला पहचान, उसका बाद उपचार। तो किसान भाई, अपन बात के आगे बढ़ावा, उसे पहला सुना एक प्यारो सो लोकगीत।

भूमिका है। इका वास्ते ऐसी कृषि पद्धति पर ध्यान देना जरूरी है जो मिट्टी में नमी रखवा और पानी को कुशल उपयोग करवा में मदद करे। खेत में जैविक पदार्थ बढ़ानो, मल्चिंग, उचित सिंचाई पद्धति और फसल चयन जैसा उपाय पानी के अच्छे प्रबंधन में सहायक हो सकता है। पानी के हर बूंद को सही उपयोग किसान की बचत भी है और आने वाली पीढ़ी उनकी सुरक्षा भी है। किसान भाई, मारो एक सुझाव है कि क्यों नहीं अपन अपना गांव में छोटो सो प्राकृतिक और जैविक मॉडल बनावा। गांव का सगला किसान मिले ने गांव का खेत को चयन करा, वहां मिट्टी की जांच करावा, फसल को चयन करा, जैविक खाद को प्रयोग करा, फसल का अवशेष उनको उचित प्रबंधन करा, प्राकृतिक कीट का प्रबंधन का उपाय अपनाया जावे और पूरी खेती को रिकॉर्ड रखा जावे। फिर दूसरा किसान उन्हें खेत के देखी के सीखी सकता है, क्योंकि किसान को सबसे बड़ो स्कूल दूसरा किसान को सफल खेत है। किसान भाई, आज का गांव का युवा होने का समय खेती में नवाचार का नरा अवसर है। प्राकृतिक और जैविक खेती का साथ ही जैविक खाद निर्माण, नर्सरी, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कृषि हुन की सीधी बिक्री जैसा काम का अवसर विकसित कराया जा सकता है। युवा किसान आधुनिक तकनीक और पारंपरिक खेती का ज्ञान के जोड़ी ने अपनी खेती के नवो रूप दे सके है। प्रिय किसान भाई, माटी री बात कार्यक्रम आपकी अपनी आवाज है। आप अपनी खेती से जुड़ी कोई समस्या, सरकारी योजना, कोई सवाल, अच्छा अनुभव या सुझाव या नवाचार हो तो आप अपनी बात पत्र का माध्यम से आकाशवाणी उज्जैन तक जरूर दीजो। हमारो पतो है माटीरी बात द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भवन विद्यापति नगर उज्जैन मध्य प्रदेश। तो आज का वास्ते अपना मुकेश भैया की आज्ञा दो, फिर मिलांगा। तब तक का लिए राम राम।

श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटेरी बात। सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी उज्जैन के साथ। श्रोताओं, रात के 8 बजने को हैं और कुछ ही देर में आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम सुर्खियों में अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

श्रोताओं, एफ एम 102.5 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से फिल्म संगीत। और ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी से, गायक लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज, गीतकार आनंद बख्शी के बोल और राहुल शर्मा का संगीत निर्देशन। आइए श्रोताओं, आपकी रेडियो साथी दृष्टि के साथ सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कभी ना अलविदा कहना से। सिंगर शफकत अमानत अली और शंकर महादेवन और कैरालिसा की मधुर आवाज़, गीतकार जावेद अख्तर के बोल और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सलाम इश्क से, जिसे आवाज़ दी शान और निहारिया जोशी ने। गीत के बोल हैं समीर के और संगीत है शंकर हसन लॉय का। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अगला गीत, जिसमें शहर की भागती जिंदगी के बीच दिल की अपनी आवाज़ सुनाई देती है।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो से। सोहम चक्रवर्ती की आवाज़ और सईद कादरी के बोल और प्रीतम का संगीत। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अगला गीत, जहां शाम में जयपुर को गुलाबी रंग घोलते आप सुन सकते हैं।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से, जिगर सरैया और प्रिया सरैया की आवाज़, जयदीप सहानी के बोल और सचिन जिगर का संगीत। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अगला गीत वर्ष 2013 की बेहद लोकप्रिय फिल्म आशिकी 2 से।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी 2 से। अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज़, इरशाद कामिल के बोल और जीत गांगुली का संगीत। आइए श्रोताओं, अब थोड़ा माहौल को मधुर करते हैं और सुनते हैं ये अगला खूबसूरत गीत फिल्म भेड़िया से।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे यह गीत फिल्म भेड़िया से अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की आवाज़, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत सचिन जिगर का। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज के फिल्म संगीत का यह अंतिम मधुर गीत।

श्रोताओं, अपनी रेडियो साथी दृष्टि को दीजिए अनुमति, फिल्म संगीत को देते हैं यहीं विराम। एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। रात के 8:45 होने को हैं और कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अनुप्रसारण किया जाएगा।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है।

0: जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
2: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्यम में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल

0: में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi. Discusses progress across political, economic, defense, energy and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders' session of BRICS Business Forum. PM Modi says economic strength of BRICS grew at nearly twice the pace of rest of the world. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayun Island in the Bab al-Mandeb Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enter final of Asia Cup defeating Malaysia at Mochi in China. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains today. During the bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition, InnoProm India. The exhibition was held for the first time in India since the 9th of this month till today and underscored its importance in further expanding trade and industrial ties. The two leaders also visited the InnoProm India exhibition and interacted with the participants. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia Annual Summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar during the meeting. During his bilateral meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian, Prime Minister Modi exchanged views on recent developments in West Asia. Mr. Modi reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi also underscored the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region, safeguarding

0: anniversary of the horrific attacks, Mr. Modi said in a social media post today that terrorism has claimed countless lives around the world. In sports, in the Junior Asia Cup hockey, Indian junior men's team defeated Malaysia 3-1 in the first semi-final today to book a place in the final at the Mochi in China. Indian skipper Anmol Ekka scored 2 goals while Sukhvinder scored 1 goal. Five-time champions India had entered the last four in a dominant fashion, defeating Chinese Taipei 15-0 in the final pool A match. India will face South Korea in the finals on Sunday. South Korea defeated Pakistan 4-1 this evening to reach the final. Indian junior women's team will face South Korea in the semi-final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi, discusses progress across political, economic, defense, energy and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders' session of BRICS Business Forum. PM Modi says economic strength of BRICS grew at nearly twice the pace of rest of the world. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayun Island in the Bab al-Mandeb Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enters final of the Asia Cup, defeating Malaysia at Mochi in China. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 18वें ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से पहले आज नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी, इक्तिसादी, दिफाई, तवानाई और मकामी और आलमी मौजूदात पर हुई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के सदर और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी दोतरफा मुलाकातें की। ब्रिक्स रुकन ममालिक के सरबराहान ने ब्रिक्स कारोबारी फोरम के रहनुमा इजलास में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की माशी ताकत बाकी दुनिया से दुगनी रफ्तार से बढ़ी है। ईरान के हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने बहर अहमर के नज़दीक बाबुल मंदिब में वाकई स्ट्रेटजी के एतबार से अहम यमन के मायू जजीरे पर कब्जा कर लिया है। और हॉकी में मर्दों की जूनियर भारतीय टीम चीन के मौकी में मलेशिया को शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में दोतरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, माशी, दिफाई, तवानाई, खलाई, हुनरमंदी, मोबिलिटी और अवाम से अवाम के बीच रावतों के शोबों में दोतरफा तआवुन की पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत के दौरान भारत और रूस के दरमियान खसूसी और मराआत याफ्ता स्ट्रेटजिक साझेदारी को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ अमल रहने से इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बात को फिर दोहराया कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही तनाज़ात के हल का वाहिद रास्ता है और भारत अमन की कोशिशों में तआवुन के लिए हर तरह से तैयार है। इस दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म को 24वें भारत रूस सालाना छोटी मीटिंग के लिए रूस दौरे की दावत दी, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने कबूल कर लिया। सरबराह मीटिंग की तारीखें बाहमी रजामंदी से तय होंगी। जनाब मोदी ने मीटिंग के दौरान जनाब पुतिन को कदीम तमिल क्लासिकी शायर और फलसफी तिरुवल्लुवर की तसनीफ करदा किताब थिरुकुलर का रूसी तर्जमा तोहफे में पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पुराने मौकिफ को दोहराया है कि तमाम मसाइल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के मौके पर ईरान के सदर मसूद पजिशकियान के साथ दो तरफा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के हालिया वाकयात पर अपने ख्यालात का तबादला किया। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम, बहरी आमदोरफ्त का तहफ्फुज़ और जहाजरानों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने की मुस्तकिल कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात के बावजूद ब्रिक्स से मुतालिक आला सतही मीटिंग में शिरकत के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के मौके पर अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ दो तरफा मीटिंग भी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स ममालिक आलमी जिद्दत तराजी

0: और हल के अहम मराकिस के तौर पर उभर रहे हैं। ब्रिक्स कारोबारी फोरम के दौरान आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स रहनुमाओं के इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की इक्तसादी कुव्वत बाकी दुनिया की कुव्वत से दुगनी रफ्तार से बढ़ी है।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है।
0: वजीर आजम ने मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्केल फॉर द वर्ल्ड की बात कही। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी तिजारत तभी मुमकिन हो सकती है जब समंदरी रास्ते महफूज हों, समंदरी रास्ते खुले हों और जहाजरानों का तहफूज हो सके।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ब्रिक्स ममालिक दुनिया की आबादी में आधे से ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं और इसीलिए इन ममालिक में बड़े पैमाने पर दरख्शां और मुतहर्रिक घरेलू बाजार दस्तियाब हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने कहा कि आलमी खित्ते जनूब को मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और कदर की तख्लीक की क्यादत करनी होगी। जनाब रामाफोसा ने यकतरफा पाबंदियों पर तश्वीश का भी इजहार किया। ईरान के सदर मसूद पजिशकियान ने मशवरा दिया कि रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत के लिए कौमी करेंसियों का इस्तेमाल अहम इकदामात में से एक होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम करेंसी जोखिम के इंतजाम और बाहमी तस्वीर के लिए जरूरी निजाम के क्याम के साथ उठाया जाना चाहिए। ब्राजील के वजीर खारजा मौरो वेरा ने कहा है कि अपनी हालिया तोसी के साथ ही ब्रिक्स ने खुद को दुनिया की दरख्शां और खुशहाल मईशतों को यकजा करने वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया है। इस दौरान कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने अपने खिताब में कहा कि ब्रिक्स की भारतीय सदारत के तहत ये फोरम पूरे ब्लॉक के रुकन ममालिक के दरमियान मुतवाजन तिजारत और तिजारती इम्कानात की तलाश के हुसूल की खातिर वाजह मकसद से तहरीक पा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी आलमी रहनुमाओं बशमूल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनफिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, इंडोनेशिया के सदर प्रोबोवो सुबियांतो, ईरान के सदर मसूद पजिशकियान और अबू जहबी के वलीहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मेजबानी करेंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत 2026 का मौजू है मजबूत इख्तरा तआवुन और पायदार तरक्की का क्याम। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के लिए नई दिल्ली सभी की तवज्जो का मरकज है क्योंकि कौमी राजधानी आलमी रहनुमाओं की मेजबानी के लिए तैयार है। इस दौरान कल होने वाली सरबराह मीटिंग के दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के रहनुमा शमूलियाती आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल करेंगे। ब्रिक्स रुकन ममालिक भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स नुमाइश का भी मुशाहिदा करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के रहनुमा मुश्तरका तौर पर शजरकारी करेंगे जिसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके इशाइये की मेजबानी करेंगे। इस दौरान वजीर आजम मोदी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के तनाजुर में ब्रिक्स रहनुमाओं के साथ सिलसिलेवार दो तरफा मुलाकातें करेंगे। ब्रिक्स की भारतीय सदारत के तहत भारत मुख्तलिफ अराकीन के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेगा, साथ ही मौजूदा मैकेनिज्म की असर पजीरी को भी मुस्तहकम बनाने की कोशिश करेगा। वहीं भारत का मकसद ब्रिक्स को ज्यादा शमूलियाती आलमी ऑर्डर तरतीब देने में तामीरी कुव्वत बनाना भी है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के पेश नजर कल कौमी राजधानी दिल्ली की अहम सड़कों पर ट्रैफिक की पाबंदियां, रास्तों की तब्दीली और आमदो रफ्त को मुनज्जम करने के इकदाम किए जाएंगे। ये पाबंदियां रात 8:15 से 11:00 तक बरकरार रहेंगी। इस दौरान इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, जनपथ, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, भगवान दास रोड, मथुरा रोड और प्रगति मैदान समेत करीबी रास्ते

करने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन की सताइश की है। एसोचैम के सदर निर्मल के मिंडा ने कहा कि ब्रिक्स इश्तराक को ठोस कारोबारी नतायज में तब्दील करने का वजीर आजम का विजन बेहद अहमियत का हामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स मईशतों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और कारोबारी शराकतदारी को वसत देने से बेपनाह मौके खुल सकते हैं और शमूलियाती और पायदार तरक्की के नए इम्कान पैदा हो सकते हैं। यूरोपीय कमीशन ने आज भारत के साथ आजाद तजारती माहदे एफटीए पर दस्तखत करने और इसे नाफिज करने के लिए यूरोपीय काउंसिल के सामने एक बाजाबता तजवीज पेश की है। इस माहदे को मदर्स ऑफ ऑल डील्स यानी अब तक का सबसे बड़ा तजारती माहदा बताया जा रहा है। यूरोपीय काउंसिल की मंजूरी मिलने के बाद यह भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा तजारती माहदा होगा। भारत और यूरोपीय यूनियन ने रवां साल जनवरी में एफटीए को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया था। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक माहदे के नाफिज होने के बाद बाजारों तक रसाई आसान होगी, महसूलात में कमी आएगी और गैर जरूरी तिजारती रुकावटें दूर हो जाएंगी। इससे भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के लिए वाज़े और काबिले एतमाद जवाबी दस्तियाब होंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत को बड़े पैमाने पर तकनीकी जिद्दत तराजी को अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी वाज़े किया कि इसके लिए इंसानी जिम्मेदारी, तहफ्फुज़ और अवामी एतमाद पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2026 से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि भारत की नौजवान नस्ल मौक़े का इंतज़ार नहीं कर रही है, बल्कि खुद प्लेटफॉर्म, कारोबारी इदारे और नए हल तख्लीक कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में आबादी के तनासुब से हासिल होने वाला माशी फायदा मुल्क के तेजी से तरक्की करते हुए टेक्नोलॉजी और फिनटेक इको निज़ाम में नुमाया तौर पर नजर आ रहा है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने दादरा और नगर हवेली को मिनी इंडिया करार देते हुए मरकजी खित्ते के समाजी तनवो, सकाफती विरसे और हमाहंगी के जज्बे की सताइश की। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के अपने पहले दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मरकजी खित्ता इस बात की एक शानदार मिसाल है कि किस तरह जिद्दत तराजी पर मबनी हुक्मरानी और अवामी शिरकत तरक्की में तब्दील हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए लोग खित्ते की तरक्की में तआवुन कर रहे हैं और मिलजुल कर जिंदगी बसर कर रहे हैं। यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने बहिरे अहमर के दहाने पर वाक़ आबनाए बाबुल मंदब में मौजूद कलीदी एतबार से अहम जजीरे मायून पर कब्जा कर लिया है। इसकी तस्दीक यमन की बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत के एक आला फौजी एहलकार और एक हूसी एहलकार ने की। यह आतिश फसा से बनने वाला एक छोटा और बंजर जजीरा है जो यमन के मगरबी साहिल से तकरीबन 3.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सऊदी अरब ने इसके जवाब में अहम बंदरगाही शहर मोखा के हवाई अड्डे पर फजाई हमले किए जिस पर हूसियों ने गुज़श्ता रोज कब्जा कर लिया था। इससे कबल ईरान की हुकूमत ने सऊदी अरब की जानिब से यमन के मुहासरे के खात्मे का मुतालबा किया और अपने इत्तेहादी हूसियों की हिमायत का इजहार किया। ईरान की वजारत खारजा ने सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान मुजाकरात की बहाली का भी मुतालबा किया। अमरीका में 11 सितंबर 2001 को हुए दहशतगर्दाना हमले को आज 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के दहशतगर्दों ने 4 मुसाफिर तैयारों को अगवा किया था। पूरे अमरीका में आज इन हमलों में जान गंवाने वालों के लिए यादगारी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। जान गंवाने वालों में आग बुझाने वाला अमला, पुलिस अफसरान, हंगामी कारकुन और आम शहरी शामिल थे। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसे में जब दहशतगर्दी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, दहशतगर्दी की सभी शक्लों और मज़ाहिर के खिलाफ भारत का अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। जूनियर एशिया हॉकी कप में आज खेले गए पहले सेमीफाइनल में मर्दों की जूनियर भारतीय टीम ने मलेशिया को 3-1 से हरा दिया। इस तरह भारतीय टीम चीन के शहर मोकी में होने वाले फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय कप्तान अनमोल एका ने 2 गोल किए जबकि सुखविंदर ने 1 गोल किया। फाइनल में भारत का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। जनूबी कोरिया आज शाम पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचा है। इस दौरान खवातीन की जूनियर भारतीय टीम कल सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया का मुकाबला करेगी। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल साहिली आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का इम्कान है।
इस दौरान महकमे मौसमियात ने बताया कि कल सुबह सवेरे कौमी राजधानी दिल्ली के कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है।

0: आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 18वें ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से पहले आज नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी, इक्तसादी, दिफाई, तवानाई और मकामी और आलमी मौजूदात पर हुई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने तनाजियात के हल के लिए मुजाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। वजीर आजम ने ईरान के सदर और अक़वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल से भी दो तरफा मुलाकातें की। ब्रिक्स रुकन ममालिक के सरबराहान ने ब्रिक्स कारोबारी फोरम के रहनुमा इजलास में शिरकत की। वजीर आजम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की माशी ताकत बाकी दुनिया से दुगनी रफ्तार से बढ़ी है। ईरान के हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने बहर अहमर के नज़दीक बाबुल मंदिर में वाक़ स्ट्रेटजिक एतबार से अहम यमन के मायू जजीरे पर कब्जा कर लिया है। और हॉकी में मर्दों की जूनियर भारतीय टीम चीन के मोखी में मलेशिया को शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको

0: बातें उनकी जो दिल की उड़ान को आंखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से, और जो फिल्मों में अदाकारी नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं।
1: सज्जन

आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

की उम्र से ही आयुष्मान ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें गाना बहुत पसंद था। अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए थिएटर से।

उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान, चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगाज और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं, लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता था।

साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे और उन्हें लोग काफी पसंद करते।

एक पहचान तो मिल गई थी और साथ ही मिल गया था कई टीवी शोज को होस्ट करने का काम भी। लेकिन एक सपना था जो अब भी अधूरा था। इस सपने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आंखों का सपना था और ये सपना सच हुआ जब 2012 में उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी विकी डोनर।

गीत फिल्म के लिए सिलेक्ट होते ही पहले ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान।

दुनिया पलट दूंगा तू ना लेना टेंशन, तेरे ही लिए है मेरी सगली अटेंशन।

जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

हिंदी दिवस के दिन जन्मे आयुष्मान को हिंदी से बड़ा लगाव है और उसका कारण है उनकी माँ जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा से लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहां बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहां कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने

एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़ जाया करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

गाने थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनके साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधाधुन की।

आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहें, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन

0: आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दुनिया के इस आपाधापी में न जाने कितने रिश्ते, कितनी बातें पीछे छूटती जाती हैं। ये जिंदगी अपनी रफ्तार में खींचती हमें उन सभी से दूर ले जाती है जो कभी हमारे दिल के करीब हुआ करते थे। न जाने जिंदगी के मन में क्या है, क्यों वो हमें अपनों के करीब नहीं रहने देती। काश जिंदगी के किसी मोड़ पर उससे फिर मुलाकात हो जिसने कहा था छोटी सी

चलते चलते कदम उनकी राहों में आ गए, न चाहते हुए भी हम निगाहों में आ गए। कहने को लाख बातें थी, आकर लब पर रुकी, हम कुछ न कह सके, बस उसकी पनाहों में आ गए। प्यार मोहब्बत के किस्से सुनाती रही ये दुनिया, हम इस किस्से को अपना बनाकर ही आ गए।

मिलने जुलने के सिलसिले बढ़ते जो जाएंगे, हम न रहेंगे, हम आप ही हो जाएंगे। ना मोहब्बत का जब भी लबों पे लाएंगे, हम न इकरार करेंगे, सीधे मुकर ही जाएंगे। क्या फायदा दिल की बातों को होठों से कहने का, हम मुंह को सिलेंगे, पलकें झुकाएंगे। इस पर भी यकीन हमको इस बात का तो है, हम कुछ न कहें फिर भी आप जान जाएंगे।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। एहसास मोहब्बत का इतना सा फसाना है, धड़कते दिल को उनकी निगाहों से बचाना है। कहना दें वो बात वही जो मेरे दिल में भी महफूज ऐसे रखी है जैसे कि खजाना है। आते ही रहते हैं हमने, कब इनकार किया है, मिलना तो तुमको था, हमने छोड़ा बहाना है।

0: देखकर खिले दिल की कलियां, महकने लगी हैं मोहब्बत की गलियां। उड़ती हूँ आसमान में मन की छलांग है, पंख तितलियों से उधार लिए भंवरों से शान है। खुशी से छानती फिरती हूँ दुनिया में, मोहब्बत का पैगाम सुनाती हूँ। अपने ही होठों से अब अपने दिल का राज बताती हूँ।
1: मिल गया।

कह तो दिया था उस दिन तुम्हें, अब फिर से आज क्यों? देखो जी, अपनी मोहब्बत पर हमको है नाज़ियों, करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे, पर दिल की ये बात अब न होठों से कहेंगे। तुम लाख मना लो चाहे, मिन्नतें करो, जो कह दिया सो कह दिया, अब फिर ना।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रतिगी समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।